91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

किंचन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो किंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ, ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: और इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी

0: करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग एप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
1: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
4: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
5: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
6: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
3: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
5: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
7: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
3: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
8: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
9: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
10: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
11: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
10: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
11: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
10: है?
11: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
12: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

श्रोताओं, आप सभी इस समय ट्यून इन है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुबह के 9 बज गए हैं और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आपके समक्ष लेकर हाजिर हुई हूँ मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, जितने भी श्रोता गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी को सुषमा का प्यार भरा राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज की सुबह आपकी हो चुकी होगी और आप सभी ज़रूर इंतज़ार में होंगे कार्यक्रम के। और देखिए, आपका इंतज़ार अब हुआ ख़त्म और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी के रेडियो पर आ पहुंचा है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा और इन 2 घंटों में हम आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें, साथ ही जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और आपके मनोरंजन के लिए आपको सुनवाए जाएंगे प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे विचार के साथ। समय, सेहत, दोस्त और व्यवहार ऐसे कीमती निवेश हैं जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है, तो अब देर है तो सिर्फ और सिर्फ गीत की। तो प्यारा सा गीत हम कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं और कर रहे हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ। सदमा फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुनेंगे सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम की जानकारी हम रोज़ाना आप तक पहुंचाते रहते हैं और अब फिर से चलेंगे हम मौसम की ओर और आपको पहुंचाएंगे मौसम की जानकारी। श्रोताओं मौसम की जानकारी अगर आपको मैं बताऊं तो स्टूडियो के बाहर अभी मौसम जो है वो हल्का फुल्का बादल है और हल्की सी धूप भी कहीं कहीं नज़र आ रही है। मिला जुला मौसम है लेकिन बारिश की संभावना बनी हुई है। धर्मशाला की बात करेंगे श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान धर्मशाला का 21 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हवा में नमी की बात करें तो 94% जो है हवा में नमी बनी हुई है। श्रोताओं ऐसे में हमें बहुत सारे निर्देश सरकार द्वारा मौसम विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मौसम की जानकारी में आगे आप तक पहुंचाएंगे मौसम विभाग क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। श्रोताओं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण बताए हैं। शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और ऊना जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए हैं और उनसे अपील भी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान कई स्थानों पर तेज़ बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो श्रोताओं अपना ख्याल रखिए और ऐसी मौसम में जबकि आपको मौसम विभाग भी कहता है कि बिना मतलब के कोई भी प्लान कहीं जाने का ना बनाएं, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और मौसम की ही बात की है तो एक ऐसा ही प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर भिजवा रहे हैं चिराग फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ में एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत जो कि बरखा के बारे में बताता था। और देखिए, बारिश जो है आजकल रोज़ ही आ रही है, यानी कि मॉनसून जो है अब आ चुका है। बहुत सारी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है श्रोताओं ऐसे मौसम में। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी फ़िलहाल के लिए समय हो रहा है समाचारों का, तो चलते हैं पहले सुनते हैं समाचार, बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एडवांस स्टडीज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भाजपा कोर समिति की बैठक आज शिमला में होगी आयोजित, राजनीतिक संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ा रही सरकार, कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान वन विभाग ने 8000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का रखा लक्ष्य और राज्य में मॉनसून की सक्रियता जारी। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडीज शिमला में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मक और संघवाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को शामिल होंगे और संगोष्ठी सहित वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण संबंधी विचारों का समकालीन संदर्भों में पुनर्मूल्यांकन करना है। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियानों और तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व प्रभारी संजय टंडन सहित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अब स्कूलों में बच्चों को भी उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रख रही है। उनका आरोप है कि मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के द्योरी स्कूल भवन का उद्घाटन 7 महीनों से लंबित है, जहां शिक्षा मंत्री को भी उद्घाटन से रोका गया है और दो नालों के बीच स्थित स्कूल में जोखिमपूर्ण स्थिति में बच्चे पढ़ाई को मजबूर है।
2: व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में आलम यह है कि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं का ना तो शिलान्यास कर सकते हैं ना ही उद्घाटन कर सकते हैं। मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी देवरी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का था। स्कूल का भवन कई महीनों से बन करके तैयार हुआ पड़ा है। मंत्री को जब मालूम पड़ा कि स्कूल का भवन तैयार है, उद्घाटन करना चाहिए, उन्होंने टूर प्रोग्राम छापा और निकल पड़े उद्घाटन करने के लिए। लेकिन उद्घाटन की पटिका के ऊपर से पर्दा जब को हटाते, उससे पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश चला गया कि इसका उद्घाटन तो हम प्रियंका गांधी जी से करवाएंगे। अरे प्रियंका गांधी जी कब आएंगे मालूम नहीं। बच्चे 4 कमरों में जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात के मौसम में बाहर भीगने के लिए विवश हुए पड़े।
1: प्रदेश में मॉनसून सीजन शुरू होते ही वन विभाग भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि यही मौसम रहता है जब प्रदेश में पौधारोपण को एक बड़े अभियान के तौर पर चलाया जाता है। इस बार वन विभाग ने राज्य में 8000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32% तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पौधारोपण अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान में जायका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: हिमाचल का जो हरित आवरण है वो लगभग 29.5% है, इसको बढ़ाने की हमारी चेष्टा है 32%। तो लक्ष्य हमने रखा है वो 7 से 8 हजार हेक्टेयर प्लांटेशन का है, जिसमें 50 लाख पौधे के आसपास रोपित किए जाएंगे। तो इसमें जो है लगभग 60% जो पौधे हैं वो लोकल फ्रूट स्पीशीज के भी होंगे। इसमें से जो मेन टारगेट है लगभग 5000 हेक्टेयर का, वो लोकल जो हमारे स्वयं सहायता समूह है या महिला मंडल्स हैं उनके थ्रू हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो स्थानीय लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित करने और हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवाओं का कल मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
4: राज्य सरकार सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ सेवा उड़ान योजना के तहत संचालित होगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ मार्ग पर सेवा हेरिटेज एविएशन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ीधार हेलीपोर्ट से शुरू होने वाली इन सेवाओं से पहाड़ी क्षेत्रों की हवाई संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी, यात्रा का समय घटेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आपातकालीन सेवाओं को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर से जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा में हेलीपोर्ट निर्माण अंतिम चरण में है। ऊना, नाहन और सोलन में भी नए हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है, जबकि लाहौल स्पीति के रंगरीक में सेना के सहयोग से हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉनसून सीजन के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संबंधित विभागों को 2400 घंटे सहायता के लिए उपलब्ध होने के निर्देश है। प्राधिकरण ने आपात स्थिति में लोगों की सहायता के लिए राज्य आपदा सहायता नंबर 1070 और जिला आपदा सहायता नंबर 1077 जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आपात स्थिति में सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। प्रदेश भर में बीते सप्ताह भर से मॉनसून सक्रिय रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 1 जून से अब तक सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज की गई है।
5: जुलाई को हमारा जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा के साथ मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश तो देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने जो है भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो निचले मध्यवर्ती इलाके हैं, जैसे हमारा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या सोलन जैसे जिलों में भी मध्यम से भारी स्तर तक की बारिश की पॉसिबिलिटीज बनी है। बारिश का जो दौर है वो लगातार 1 वीक तक रुक रुक के सभी जिलों में हमें देखने को मिलता रहेगा। मानसून इस साल हमारा हिमाचल प्रदेश में अराउंड 5 डेज लेट पहुंचा है। नॉर्मली 25 जून की बजाय इस साल हमें 1 जुलाई को मानसून देखने को मिला है और 1 जुलाई के बाद से लगातार जो है मानसून काफी एक्टिव बना हुआ है पूरे प्रदेश में। लगभग हर एक दिन हमें किसी न किसी जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। आगे आने वाले दिनों में भी मानसून हमारा काफी एक्टिव रहेगा और जहां तक बारिश की बात है, अभी तक यानी कि 1 जून से लेकर के 5 जुलाई तक अगर बात करें तो प्रदेश में अराउंड 136 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। इस बार हमें अभी तक 115 मिलीमीटर बारिश मिली है, जो कि अराउंड 16% कम बारिश।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने भारी बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रामपुर में बादल फटा, 2 पंचायतों में तबाही, चंबा में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से किशोरी की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, रामपुर में बादल फटा व सैंज में बाढ़ से तबाही, भरमौर में कार पर गिरा पत्थर, बच्ची की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, आज 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को बुलाई कैबिनेट की मीटिंग, जीएडी ने विभागों से मांगे एजेंडे। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 16 एचएएस ट्रांसफर। दैनिक भास्कर की एक खबर है, प्रदेश में साल दर साल घट रहा सेब का उत्पादन, इस बार केवल 2 करोड़ 18 लाख सेब उत्पादन का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एडवांस स्टडीज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वंदे मातरम एक यात्रा नामक प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भाजपा कोर समिति की बैठक आज शिमला में होगी।

को बढ़ा रही सरकार, कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। प्रदेश में इस मॉनसून के सीजन के दौरान वन विभाग ने 8000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का रखा लक्ष्य। और राज्य में मॉनसून की सक्रियता जारी, मौसम विभाग ने आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप तक पहुंचा रही है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। और समाचारों के बाद श्रोताओं अब फिर से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर, यानी कि सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और उसके बाद आज कार्यक्रम में होंगी बहुत सारी बातें श्रोताओं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हम लेकर आए हैं रोज़ा फिल्म से। आवाज़ रहेगी मिनमिनी की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। और इन दो घंटों में हम आपके साथ करते हैं बातचीत, जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनवाए जाते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से चलते हैं ज़रूरी बातों की ओर। और बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी है जो आपके साथ साझा करनी है। श्रोताओं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कांगड़ा ने मानसून शुरू होने पर जिला वासियों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन व पुलिस विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, नदी नालों और खड्डों से दूर रहने की गुजारिश की है। हालांकि जिला में मानसून की दस्तक के बावजूद कई स्थानों पर पर्यटक और लोग खड्डों नालों में उतर रहे हैं, जो कि और अधिक खतरे को न्योता दे रहे हैं। श्रोताओं, इस संबंध में पुलिस विभाग कांगड़ा की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। बावजूद इसके अब तक धरातल में तस्वीर कुछ और ही है। जिला मुख्यालय धर्मशाला सहित श्री चामुंडा मंदिर के साथ बहती बिनवा खड पर श्रद्धालु बिना रोक टोक के खड में पहुंचकर हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की स्थिति भी भयानक बाढ़ होने का खतरा बना रहता है। उधर जिला कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP वीर बहादुर सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान नदी नालों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, ऐसे में इसके आसपास जाने से बचना ही सुरक्षित रहेगा। तो श्रोताओं, ये जो अपील और ये जो गुजारिश हमसे की जाती है वो हमारे लिए ही की जाती है, और हमें सरकार द्वारा या मौसम विभाग द्वारा जो भी निर्देश आजकल दिए जाते हैं उनकी अनुपालना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो श्रोताओं, आप तक ये जानकारी पहुंचाने का मकसद यही है कि आप सभी सतर्क रहें और ऐसे मौसम में नदी नालों से दूर रहें। और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारा गीत आप तक पहुंचाते हैं। शोले इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना दोस्ती पर आधारित ये गीत। दोस्ती पर जितनी बात की जाए श्रोताओं, वो कम है, क्योंकि दोस्ती हर किसी की होती है और किसी एक के साथ ही बहुत अच्छी दोस्ती होती है। श्रोताओं, ज़िंदगी में अगर आपके पास सच्चा दोस्त है तो ये मानिए कि आपसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में अगर एक दोस्त अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकलती है और अपना दुख दर्द साझा करने के लिए हमारे पास एक सच्चा यार, सच्चा दोस्त होना ज़रूरी भी है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि आज 7 जुलाई का दिन है, 2026 चल रहा है। लेकिन श्रोताओं, ये दिन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ आते हैं इतिहास में, और अब हमें चलना है इतिहास की और आज के दिन की घटनाओं पर। श्रोताओं, 7 जुलाई का दिन और 1896 का सन था, भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना गया। फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया। इस शो की टिकट की कीमत 1 रुपये थी। इसके साथ श्रोताओं, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो 7 जुलाई 1799 का दिन महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौल पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1948 की बात करें तो आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। 1999 में श्रोताओं, आज ही के दिन

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जांबाज कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके साथ ही श्रोताओं, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आज के दिन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। 1981 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में आज ही के दिन हुआ था। 1883 में प्रसिद्ध साहित्यकार और उसने कहा था कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म भी आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, 1656 की बात करें तो सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो ये तो थी 7 जुलाई की कुछ घटनाएं, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म की बातचीत। और अब अपनी बातों को यहीं पर रोकेंगे और आपको लिए चलेंगे एक और तराने की ओर और आपको सुनवाएंगे लव फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आज 7 जुलाई का दिन है श्रोताओं, और बहुत सारे दिन आज हम लोग मना रहे हैं श्रोताओं। आज इंटरनेशनल पीस एंड लव डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड चेंज डे, इसके साथ ही ग्लोबल फॉरगिवनेस डे भी आज मनाया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी बातचीत इन सभी पर ज़रूर होगी श्रोताओं, लेकिन पहले हम बात करेंगे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे पर। बिल्कुल श्रोताओं, कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन शब्दों का घाव कभी भी नहीं भरता है, वो चोट हमेशा बनी रहती है। इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए श्रोताओं कि अगर तुमसे नहीं होगा कि जगह हम कहें कि तुम कोशिश करो, तुम ज़रूर कर लोगे, तो सामने वाले के मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है और जो काम नहीं होने वाला होता है वो भी हो जाता है। कहते हैं कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बातों को बोलें तो वही होता है जो हम बोलते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि वही बोलिए जो आप चाहते हैं, वो कभी मत बोलिए जो आप नहीं चाहते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर हमारे जो शब्द हैं श्रोताओं, वो हमारी पहचान होते हैं। हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, कितने हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं, ये डिपेंड करता है हम पर। और श्रोताओं देखिए, कहते हैं कि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ छोटी मोटी तकरार भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें किसी की बात को बहुत लंबे समय तक अपने दिल में अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। किसी से कोई गलती होती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, या हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत छोटा सा शब्द है सॉरी, और बहुत ताकत भी रखता है ये शब्द। तो श्रोताओं और भी बातें होंगी इस पर, लेकिन फिलहाल के लिए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में एक और गीत की ओर, दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो कुंचन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार फिर से सभी को सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के बारे में। सॉरी, इसके बारे में हमने बात की थी। सॉरी बहुत छोटा सा शब्द है श्रोताओं, लिखने में और बोलने में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ये कई बार बोला ही नहीं जाता। बिल्कुल श्रोताओं, हिम्मत नहीं होती, हमें लगता है कि हम किसी के नीचे झुक रहे हैं या हम छोटे हो रहे हैं। श्रोताओं देखिए, झुकने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा हो जाता है। इसलिए जहाँ भी हमसे कहीं छोटी सी भी गलती हुई हो तो सॉरी मांग लेनी चाहिए, और अगर किसी से हुई भी हो तो उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। कई बार हम लोग माफ़ी देते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, लेकिन दिल से उसे माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये बहुत अनमोल है श्रोताओं। बहुत समय लगता है इन रिश्तों को बनाने में, लेकिन इन्हें संवारने में, संभालने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा धैर्य लगता है, थोड़ा सा प्यार लगता है, और कहीं ना कहीं ये सॉरी शब्द जो है वो हमें कहना पड़ जाता है, और कह देना चाहिए, कहने से मन हल्का होता है। तो श्रोताओं, जितने भी श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक लाइव पर हमें देख रहे हैं, तो हमें देखिए मत, सुनिए मत, साथ ही साथ एक और काम कीजिए। कहीं किसी के साथ आपकी छोटी मोटी सी बात हुई हो तो उसे फ़ोन कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। एक सॉरी कह देने से आपका रिश्ता सुधर सकता है। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि यदि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो बिना देर किए हम माफ़ी मांगेंगे, और यदि किसी की तरफ से हमें तकलीफ हुई है तो कोई भी कड़वाहट अपने दिल में हम नहीं रखेंगे और उस बोझ को उतार फेंकेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी जुड़े हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, और साथ ही जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है। तो चलिए एक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं श्रोताओं की। धर्मशाला के सहायक अभियंता रमन भरमौरिया ने सूचित किया है कि विद्युत लाइनों की आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 8 जुलाई 2026 यानी कि कल प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ क्षेत्रों में बिजली जो है वो बाधित रहेगी। सहायक अभियंता ने बताया है कि 11 केवी दाढ़ी फीडर के अंतर्गत शीला चौक, अजीवर हब, दाढ़ी गैस एजेंसी के पास, लुंगड़ू चौक, अमूल मिल्क शॉप के पास, गबली दाढ़ी, आसू बटेर और आसपास के क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसी प्रकार 11 के भी बगली फीडर के अंतर्गत मटोर, बगली, अनसोली, पटोला, घना, पुराना मटोर, चैतड़ू, मस्तपुर, डगवार तथा आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि मौसम खराब होने पर ये काम अगले दिन भी किया जा सकता है, तो आप सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में जानकारी और बातों को यहीं पर रोकते हैं और आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। सुनते हैं श्रोताओं ये प्यारा सा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, तूफान को आना है आकर चले जाना है, ये जो बादल हैं ये कुछ ही पल के हैं, इन्हें छट भी जाना है। बिल्कुल श्रोताओं, ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे ही तूफान हमारे आते हैं, लेकिन उन तूफ़ानों से अगर हम डर गए और हार मान ली तो ज़िंदगी चलना या चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन तूफ़ानों से लड़ना भी हमें आना चाहिए। कुछ समय का एक दौर आता है श्रोताओं, उस दौर से अगर हम निकल जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हमने बात की ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के बारे में, और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड चेंज डे के बारे में। हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शांति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, इसे इंटरनेशनल चेंज फेडरेशन और इंटरनेशनल पीस एसोसिएशन द्वारा विशेष रूप से प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून और विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस दिन वर्ल्ड चेंज डे और ऐसे अभियानों पर हम सकारात्मकता के साथ बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कदम हैं श्रोताओं, जिन्हें उठाकर हम ज़रूर इस दिन को मना सकते हैं। लोगों के बीच आपसी प्रेम और शांति को बढ़ावा देने वाले विचारों को सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेड़ लगाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और बिजली पानी की बचत करें। श्रोताओं, इन पर हम लोग बात करते ही रहते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले ही बात की थी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने पर, और पेड़ पौधे लगाने के लिए तो हम आए दिन आप लोगों के साथ कहते ही रहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें करना भी चाहिए। बरसात का ये मौसम अब आ गया है श्रोताओं, और ऐसे में पेड़ पौधे लगाने का समय भी होता है। कोई भी पेड़, कोई भी बीज, कहीं पर भी अगर आप रोप देते हैं, लगा देते हैं, तो वो ज़रूर फलीभूत होता है। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हमारे जो वन हैं वही हमारे सहायक होंगे, और वनों की कमी जो है, जो आ गई है, उसकी वजह से जो हम लोग देख रहे हैं ये मौसम और ये जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इसका नुकसान जो है हमें झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। श्रोताओं, सतत जीवन शैली अपनानी चाहिए। मिशन लाइफ जैसे अभियानों का हिस्सा बने जो प्रो पैलेनेट यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हैं। साथ ही अपने आसपास सफाई अभियान चलाएं या किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर समाज कल्याण में अपना योगदान दें। बिल्कुल श्रोताओं, हमें अपने आसपास की साफ सफाई में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। मिलजुल कर हमें उसकी साफ सफाई करनी भी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने घर तक ही सीमित हैं, अपने घर की साफ सफाई ही हम करेंगे, बाहर का हमें क्या लेना देना, लेकिन नहीं, हमें लेना देना है, क्योंकि बाहर जो पर्यावरण है, जो हमारा आस पड़ोस है, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारी गलियां हैं, नदी नाले हैं, कुल्ले हैं, बॉडियां हैं, वो सभी हमारी ही हैं, और उनके बारे में सोचना भी हमारा ही काम है। तो श्रोताओं, आइए सोचते हैं इस पर और ज़रूर काम भी करते हैं। तो अब चलते हैं फिर से, एक और तराना आप तक पहुंचाते हैं कश्मीर की कली से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में श्रोताओं ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें आप सभी ट्यून इन हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आज बहुत सारी बातें आपके साथ कर रहे हैं और आज हम इंटरनेशनल पीस एंड लव डे भी मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस। श्रोताओं, इसको एक ऐसा अवसर जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना हथियार है, ना धन दौलत, बल्कि प्रेम, अपनापन और शांति है। आज के समय में जब भागदौड़, तनाव और मतभेद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तब एक मुस्कान, एक मधुर सा शब्द और एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा सकता है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का ना होना नहीं है, बल्कि मन की वह स्थिति है जहाँ ईर्ष्या, घृणा और क्रोध की जगह प्रेम, सम्मान और विश्वास हो। जब हमारे विचार शांत होंगे, तब हमारा परिवार शांत होगा, समाज शांत होगा और यही शांति पूरे विश्व तक पहुँचेगी। प्रेम की भाषा कोई भी नहीं है, कोई धर्म और कोई सीमा नहीं होती। ये इंसान को इंसान से जोड़ता है। यदि हम हर दिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी की मदद कर सकें या किसी को सम्मान दे सकें, तो यही इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश होगा। श्रोताओं, कई बार हमने देखा है कि बड़े बुज़ुर्ग, कभी बाज़ार में हम अगर चले जाएं तो रास्ते में हमें मिल जाते हैं जो बाज़ार से अपना सामान लेकर थैलों में उठाकर धीरे धीरे चल रहे होते हैं अपने घर की ओर। और श्रोताओं, जब उनकी हाथ, उनके बाजू थक जाते हैं तो कहीं बैठकर आराम करते हैं, फिर से दोबारा से एक जोश लाते हैं और फिर से अपने बैग उठाकर चल देते हैं। ऐसे में अगर हम वहाँ से निकल रहे हों और हम ऐसा देख कर निकल जाएं, तो वो गलत बात होती है। अगर हम उन्हें जानते हों, ना भी जानते हों, फिर भी हमें ज़रूर कह देना चाहिए कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। छोटी सी एक बात किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी के दर्द को कम कर सकती है। लेकिन बात वही है सोच विचार की। हमें विचार करना चाहिए इन छोटी छोटी बातों पर, कहाँ हम किसी के सहयोगी बन सकते हैं, कहाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे मौके हमें ऐसे मिलते हैं श्रोताओं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। बस में चढ़ते हैं, बस में कोई बुज़ुर्ग खड़ा है, बच्चे वाली कोई महिला

खड़ी है उन्हें सीट दे सकते हैं, किसी को रोड पार करना है, सड़क पार करनी है लेकिन वो चलने में सक्षम नहीं है या धीरे चलता है, उन्हें डर लग रहा है, तो अपना हाथ हम उन्हें थमा सकते हैं और एक रोड क्रॉस करवा सकते हैं। श्रोताओं, ये छोटी छोटी सी बातें ही हैं जो कहीं ना कहीं हमें भी मन की शांति देती है और लोगों के प्रति भी हमारे प्रति अच्छी भावना लाती है। श्रोताओं, एक छोटा सा सहयोग एक बड़ी कहानी बनकर रह जाता है, ये कई बार हमने देखा है। तो छोटे छोटे सहयोग दीजिए और देखिए कहाँ हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में हर कोई परेशान रहता है, हर कोई किसी ना किसी दुख में डूबा रहता है। उनके साथ बात कीजिए, उनके दुख को हल्का करने में उनकी मदद ज़रूर कीजिए। बातों को अब यहीं पर विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत से गीत के साथ। रूप कुमार राठौर की आवाज़ में श्रोताओं लीजिए सुनिए रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। थोड़ी सी बात करेंगे श्रोताओं, हम लोग अपनी सहूलत के लिए बहुत सारे लोग जो हैं कई जगह जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। बिल्कुल कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कई बार बुरी भी होती हैं, लेकिन चलो एक बात की एक खबर जो मैंने देखी जो मैंने सुनी उसके बारे में आपसे बात करूँगी। टांडा मेडिकल कॉलेज में जहाँ टीवी मरीज़ों का इलाज किया जाता है उस बिल्डिंग की बात करेंगे जहाँ आजकल कहते हैं कि बरसात हमारे यहाँ तो बाहर लगी है लेकिन वहाँ अंदर ही लगी हुई है, छतें टपक रही हैं और उस वार्ड का उस हॉस्पिटल में पानी इतना है कि लोग अपने जो भी उन्होंने नीचे लोअर पहना है उसे उठा उठा के चलने पर मजबूर हो गए हैं। स्विमिंग पूल जैसा वहाँ का हाल बना हुआ है। श्रोताओं देखिए, गरीब जनता जो है वो अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जाती है ताकि उनके पैसे थोड़े कम लगें और इलाज मिल सके, और ऐसे में अगर उन्हें पानी में तैरना भी पड़ जाए तो वो तैर लेते हैं। लेकिन श्रोताओं सोचने वाली बात है कि जहाँ मरीजों के लिए हम ये सुविधाएं देते हैं तो वहाँ अगर थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत हो तो हमें जल्दी से हाथ बढ़ा देना चाहिए और वो सभी चीज़ें ठीक कर देनी चाहिए, क्योंकि टीवी का मरीज जो है उसे संक्रमण की चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसे में उसे सूखा वातावरण चाहिए जहाँ पानी ना हो, नमी ना हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं श्रोताओं, आजकल के लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारे हाथों में जो मोबाइल फ़ोन है वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है और हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डालता है। तो ऐसी खबरें जब हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, प्रशासन को कहीं ना कहीं जागना चाहिए, सोचना चाहिए और पब्लिक उस चीज़ को उठाए उससे पहले उन्हें उसका निदान कर देना चाहिए। तो श्रोताओं ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें आगे बढ़ानी चाहिए, उठानी चाहिए ताकि हमें सहूलियत मिल सके। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इसका समय रहता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरों को आप तक पहुँचाने का हमारा एक मकसद रहता है। और श्रोताओं जागरूक बनिए, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, हम अगर जागरूक बनेंगे तभी अपने लिए आवाज़ उठा पाएंगे। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, माफ़ कीजिएगा, श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपको सुनवाएंगे साथिया फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी की अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, आप सभी इस समय ट्यून इन है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोता इस समय अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोता, कुछ एक छोटी सी बात जो है आपके साथ करनी है। आए दिन बेटियों और बहनों के साथ होने वाली दुखद घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती हैं। ऐसे हादसों को रोकने की जिम्मेदारी केवल कानून या पुलिस की नहीं बल्कि हम सभी की भी है। सबसे पहले बच्चों को बचपन से ही अच्छे बुरे का ज्ञान हमें देना चाहिए, अच्छे बुरे स्पर्श की जानकारी देनी चाहिए। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि किसी भी परेशानी में वे डरे ना। उनके माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े से खुलकर बात कर सकते हैं। बेटियों को आत्मविश्वासी बनाइए, लेकिन साथ ही बेटों को भी ये सिखाइए कि हर लड़की का सम्मान करना उनका संस्कार है। असली बदलाव तभी आएगा जब सम्मान और समानता की शिक्षा घर से ही शुरू होगी। श्रोताओं, अगर कहीं किसी महिला या बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ या हिंसा दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, सुरक्षित तरीके से मदद करें, संबंधित अधिकारियों को सूचना दें और पीड़ित का साथ भी दें। श्रोताओं, ये सब बातें कहने को बहुत कुछ है लेकिन हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, आए दिन हम खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें पढ़कर और देखकर गुस्सा तो बहुत आता है और हम सोचते हैं कि हमारा कानून ऐसा हो कि जो गलत करे उसे उसी समय उसकी सज़ा मिल जाए। लेकिन श्रोताओं,

बेहतर है। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाएंगे और बातों के साथ साथ गीतों का जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए। तो चलते हैं कल हो ना हो, इस फिल्म का गीत सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

0: जूलिया
1: डिनर रेडी?
0: नॉट टुनाइट डार्लिंग।
2: 91.2 मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम करेंगे मौसम को लेकर कि आजकल मौसम ख़राब है और बरसात जो है वो रोज़ाना हो रही है और ऐसे में हम लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि बिना वजह से हमें कहीं भी नहीं जाना है, घर पर ही सुरक्षित रहना है। लेकिन फिर भी हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम बना ले रहे हैं और ख़ास करके जो खड और नाले हैं वहाँ पर भी लोगों को देखा जा रहा है। श्रोताओं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो जानते हैं कि पीछे पहाड़ों पे जब बरसात होती है तो वो पानी का स्तर जो हमारे सामने रहता है वो एकदम से बढ़ जाता है और इस चीज़ से जो लोकल लोग हैं वो जागरूक होते हैं, उन्हें पता होता है, इसलिए वो ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि दिनों में बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो नदी नालों में फंस जाते हैं, कई पहाड़ियों में फंस जाते हैं। तो ऐसे में हमें लोकल लोगों से ज़रूर जानकारी ले लेनी चाहिए और अगर हमें किसी के द्वारा रोका जाता है कहीं भी जाने से, खास करके नदी नालों की ओर, तो हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है और एक छोटी सी खुशी के लिए अगर हम लोग ऐसा रिस्क ले लें और लेने के देने पड़ जाएँ तो मुश्किल हो जाएगी। तो श्रोताओं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए और ऐसे मौसम में पहाड़ों पर जाने से बचिए, नदी नालों के करीब जाने से बचिए और ऐसी जगह ना जाएं जहां पर आपको रिस्क हो, डर हो। श्रोताओं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है और ऐसे में हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को। आंधी फिल्म से गीत लिया गया है श्रोताओं और लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे इस गीत में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, ये जो सुई है घड़ी की, ये टिक टिक टिक टिक करते हुए कब समय पर पहुंच जाती है जब हमें जाना होता है पता भी नहीं चलता। और 2 घंटे का सफ़र जो है वो आपसे बातें करते करते, गीत सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कब ख़त्म होने पर आ जाता है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की आपसे। इंटरनेशनल पीस एंड लव डे पर बात की, वर्ल्ड चेंज डे पर बात की, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे पर बात की। और आपने हमारी बातें सुनी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अगर आपको लगी होगी कि ठीक थी या उसे हमें अपनाना चाहिए तो ज़रूर उसे अपनाइएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय हमारे पास थोड़ा ही है, इसलिए चलते हैं आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, चक दे इंडिया। इस फिल्म का गीत हेमा चंद्र की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, चलने का नाम ही जिंदगी है और चलते रहना चाहिए हमें, क्योंकि ज़िंदगी में जो रुक गया वो कहीं नहीं पहुंचता, वो वहीं रह जाता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चलते रहना चाहिए और आशाएं हमेशा ज़िंदा रखनी चाहिए। और कार्यक्रम में अब समय जो है वो समाप्ति की ओर है। चलते चलते अब हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत, इकबाल फिल्म से, के और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आज अगर हम जाएंगे तो फिर नई जानकारियों और नई बातों के साथ, नए गीतों के साथ फिर से आएंगे। तो मुझे भी आप दीजिए जाने की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुन

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस, सॉरी ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला,
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना

0: 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
3: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
4: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
3: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
4: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
3: है?
4: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
6: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
5: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

you.

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो दोस्तों के साथ साथ रूमा जी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद रुचिका, कितना मजा आता है ना, हम बार बार मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ भी जब बातें होती है तो बातें करने का जो मजा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो हमें समय का भी पता नहीं चलता है। और देखो, हम इतनी महत्वपूर्ण बातें हर बार लेके आते हैं कि हम खुद भी भूल जाते हैं समय कितना है और किस तरह से कम समय में अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ रखना है।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने। तो दोस्तों, हम हाजिर हुए हैं कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। आप सभी जुड़ चुके हैं इस प्यारे से सफर में और ये सफर प्यारा तो रहता ही है और साथ साथ में थोड़ा गंभीर भी हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि जानकारी ऐसी होती है,
1: अक्सर मुद्दे ही हम गंभीर छेड़ते हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो गंभीर विषयों पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतनी बातों को गंभीर किया जाए कि जीवन में वैसे ही इतनी गंभीरता है सबके, तो क्यों ना हल्की फुल्की बातें करें। लेकिन हम लोग ऐसी हल्की फुल्की बातें करके सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से अपने दोस्तों को खुश नहीं करेंगे। हमारा एक मकसद ये भी है कि हम अपने दोस्तों को मनोरंजन के साथ साथ जागरूक भी करेंगे और ये जागरूकता आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारे सामने देखो ना रुचिका, कई प्रकार की चीजें हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती है कि बाद में हमें लगता है कि अच्छा, हमें इस चीज का नॉलेज होता तो शायद इस चीज से हम बच सकते थे। तो हमारा तो मेन मकसद यही रहता है कि हम मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इसी तरह से मिलकर भरते रहें अपने दोस्तों के साथ मेरे हौसलों की उड़ान।
0: जी बिल्कुल, और दोस्तों की बात कर रहे हैं तो सच में रूमा जी, जब मैं भी आपसे मिलती हूँ ना तो एक अलग ही उत्साह मेरे मन में आ जाता है कि नहीं, आज तो कुछ जरूर मतलब बहुत ही अच्छा जानने के लिए मिलेगा और अच्छी जानकारियाँ मेरे तक तो पहुँचेंगी ही, पर साथ ही साथ हमारे दोस्तों तक भी पहुँचेंगी, क्योंकि यही तो एक हमारे लिए जरिया है, साधन है।
1: बिल्कुल, और
0: अपडेट रहने का,
1: अपडेट रहना बहुत जरूरी है और हमारे पिटारे में बहुत सारी जानकारियाँ रहती है और हमारा पिटारा भी बार बार उछल उछल के खुलने को तैयार रहता है कि इन जानकारियों को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ साझा करो। तो हम आज फिर आ गए हैं लेकर आपके लिए एक बहुत ही नायाब उम्दा जानकारी जो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में।
0: जी तो रूमा जी, अब आपने बता तो दिया है हमारे दोस्तों को कि घरेलू हिंसा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पर आपको क्या लगता है कि आज के समय में भी घरेलू हिंसा देखने को मिलती है?
1: देखो रुचिका, जैसे जैसे हमारे जीवन में व्यस्तता बढ़ती गई है ना, हमारी उम्मीदें एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम लोगों में जो सब्र जैसी चीज होती है ना और सहनशीलता, वो बिल्कुल कम हो गई है। और ऐसे में हर घर में कोई ना कोई मुद्दा इस तरह का उठ जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, देखो थोड़ा बहुत हर घर में चलता है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे भी गंभीर मामले आ जाते हैं कि घरेलू हिंसा की अगर आप बात करें, आपने कहा कि आज भी घरेलू हिंसा होती है, तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि आजकल भी लगभग 100 में से 70% महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। उनमें से पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं अपने काम पे, जो अपने पैरों पे खड़ी महिलाएं हैं वो भी महिला जो है घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। और इससे अलग अगर हम बात करें, जो वो महिलाएं जो सिर्फ घरों में रहती हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। घरों में रहने वाली महिलाएं जो है वो अपने आप को सिर्फ एक घरेलू कर्मचारी के तौर पर या काम वाली के तौर पर ही कंसिडर करने को कई जगह पे उनको रखा गया है। उनकी जो एक इमेज है वो इसी तरह की है कि महिला है और घर का काम काज संभालने तक ही सीमित है, और अगर वो उस चीज में कहीं नाकाम हो जाती है तो उसको कई तरह की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि घरेलू हिंसा में मारपीट ही होती है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर है और छोटी छोटी चीजों के लिए वो जब अपने पति पे या परिवार पे निर्भर होती है तब भी उनको ताहने उल्हाने सुनने को पड़ते हैं और इस तरह से वो मानसिक हिंसा का भी शिकार हो रही है। तो घरेलू हिंसा तो हर कहीं है आजकल।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, और एक बात अभी आपने ये कही कि जैसे कि महिला को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मतलब घर तक ही सीमित हूँ, और मेरा जो एक बोलते है ना कि टैग लाइन ही होती है कि महिला है तो महिला का काम है खाना बनाना, चूल्हा चौंका और ये झाड़ू पोछा वगैरह, ये सिर्फ लड़कियों का या महिलाओं का काम है। पर अक्सर ये सोच मुझे लगता है अब तो कुछ हद तक बदली हुई है, पर ये सोच जन्म कहाँ से लेती है? अक्सर जब हम बचपन में जैसे ही बेटियां जन्म लेती हैं, तो उन्हें तभी से हम ये सुनाने लग जाते हैं कि तुम बेटी हो और तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें सीखना है।
1: बच्चों को यही सिखाते आए हैं, लड़कियां हैं तो उनको लड़कियों की तरह ही हम उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको वो सिखाया जा रहा है जो लड़कियों के लिए बेसिक बहुत ही जरूरी है, घर का काम, बाहर का काम, हर एक चीज में। लेकिन यहीं पे हम एक फर्क अपने बच्चों के साथ डालना शुरू कर देते हैं। जो हमारे घर में मेल चाइल्ड होता है, हम उसके साथ वो बर्ताव अभी भी नहीं करते हैं जो हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं। तो यहीं से ये जो है हिंसा जैसी जो चीजें हैं, वो यहीं से ये जो गैप हम लोगों ने रखा है, यही एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा के मामलों में जो आज भी बढ़ोतरी हो रही है।
0: बिल्कुल, और बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है, जब आप अपने घर में अपनी बेटी के साथ वो बिहेव कर रहे हैं, भेदभाव वाली नजरों से उसको देख रहे हैं, एक कहते हैं ना, वैसे भी बोलते हैं एक मतलब कि महिला की दुश्मन एक महिला ही बनती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ही सुना होता है, सहयोग नहीं करते हैं।
0: देखिए, जब कि एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो ऐसे हम ऐसा लगता है जैसे कि उनकी सासू माँ है जो भी है, तो जैसे ही वो कंसीव करते हैं तो उन्हें ये टेंशन हो जाती है कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो वहाँ से वो एक सोच पनपनी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल, जो जेंडर गैप हम लोगों के बीच में है, जब तक ये जेंडर गैप नहीं भरेगा, इस तरह के हिंसा के जो मामले हैं वो हमारे समाज से खत्म नहीं हो सकते हैं। और ये चीज भले ही आज हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़के और लड़की में अंतर किया जाता है। आज भी देखिए, परिवार से छुप कर लोग, समाज से छुप कर झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाके कई तरह के उपचार हम करते हैं लड़का पाने के लिए, और ये लड़के की जो चाह है, कई बार हमारी महिलाएं इस वजह से भी प्रताड़ित होती हैं कि वो एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई। और इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं जो घरेलू हिंसा के हमारे सामने आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी हिंसा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मनोरंजन की ओर से हमारा थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, क्योंकि मुद्दे जब हम गंभीर ले लेते हैं तो हम पहले ही बोल चुके थे हम गंभीर हो जाते हैं। तो रुचि का एक प्यारा सा गीत अगर आप हमारे दोस्तों को सुनाएं तो मुझे लगता है माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में गीत संगीत ना हो तो फिर वो कार्यक्रम ही क्या है। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की तरफ, उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी इन उड़ानों के साथ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा के साथ। जी तो आइए रूमा जी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपने दोस्तों को थोड़ा सा अब मनोरंजन से निकाल के लेकर चलते हैं जीवन के संघर्षों की ओर।
1: बिल्कुल। और रुचिका जी हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की
0: जी,
1: तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि घरेलू हिंसा है क्या।
0: है क्या? बिल्कुल।
1: घर से ही घर में जितने भी व्यक्ति सदस्य रहते हैं उनका आचरण किस तरह का आपके साथ है। देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं हम वहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट करें, जो भी हमारे पार्टनर के साथ है जो भी जिस तरह की भी उसकी व्यक्तित्व है हम उसी के साथ उसको सहजता से स्वीकार कर ले। लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में क्या आता है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो पति है, सास ससुर है, परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनका आचरण किसी भी महिला के साथ किस प्रकार से है। अगर वो मारपीट करते हैं, उसको ताने उलाहने देते हैं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, उसकी शक्ल सूरत को, कई बार आपने देखा होता है कि इस तरह की भी ताने किए जाते हैं रंग रूप को लेके, और भी कई प्रकार के मारपीट, जैसे कई बार ऐसे भी हमारे सामने आता है कि मारपीट से किसी महिला का कोई अंग जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं, अपंगता तक आ जाती है, किसी महिला की आपने सुना होगा मौत तक हो जाती है। तो हम किस तरह का आचरण हम अपने परिवार के उस सदस्य के साथ कर रहे हैं, अगर उसके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको ताने उलाने दे रहे हैं, तो ये सभी घरेलू हिंसा में आता है। और घरेलू हिंसा को जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अभिशाप होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना एक महिला के ऊपर जो होती है दो परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, इसी के साथ साथ समाज निर्माण में भी एक महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन जब एक महिला के साथ मारपीट होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको अपशब्द बोले जाते हैं, उसकी किसी भी कमी को बार बार उजागर करके उसके सामने लाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो महिला अपने आप में अंदर ही अंदर घुटती है, अपने परिवार को अपना वो उस जिम्मेदारी के साथ अपने उस परिवार को बनी ही संभाल पाती है। क्योंकि हर वक्त जब महिला किसी मानसिक तनाव में रहेगी या उसका स्वास्थ्य गिर जाएगा इन चीजों की वजह से, तो अपने परिवार और बच्चों को वो उतना समय और उतना गहराई के साथ वो नहीं संभाल पाएगी हर चीजों को। तो घरेलू हिंसा अपने आप में एक बहुत ही तकलीफ देह है, और ये सभी अभी भी हमें शर्म जैसी महसूस होती है जब हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के कृत्य होते हैं, जहाँ बहू बेटियों को मारा जाता है, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि बेटा पैदा नहीं कर पाई है उसके लिए उनको ताने दिए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो घरेलू हिंसा में आती है।
0: जी बिल्कुल। और अभी आपने कहा ना कि जैसे रंग रूप को लेकर जो है बहुत सी महिलाओं को ऐसे ताने भी सुनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि क्या होता है कि जैसे ही कई बार होता है ना कि अब वैसे भी शादियां बहुत से कम हो गई हैं, जैसे लड़कों को लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई है, लड़कियों को लड़के मिलना मुश्किल हो गए हैं, तो पता है क्या होता है कि जब शादी नहीं हो रही होती है, किसी भी लड़के की बात करूं मैं फिलहाल, यहां हम महिला घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, तो जहां शादी नहीं हो रही होती है तो वो उस समय जो है उन्हें एक तरह से मजबूरी सी, मतलब घर वालों के लिए वो समाज के तानों से बचने के लिए शादी जरूरी हो जाती है, तो लड़के के लिए भी वो एक तरह से फॉर्मेलिटी बन जाती है।
1: जी जी।
0: तो वो उस समय ये नहीं देखते हैं कि रंग रूप कैसा है, लड़की कैसे है, काम क्या है, क्या है, जो भी है कुछ भी, मतलब उसके गुण जो होने सभी अच्छे लगते हैं।
1: जी।
0: पर जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर वो लड़की को ताने मारने शुरू हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं उस समय तो बड़ी अच्छी लग रही थी, अब ऐसे लग रही है, अब वैसे है हमारी, तो सब मतलब ये काम ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती, मतलब कि उस सिचुएशन को इतना टॉक्सिक जैसे बना देते हैं एक महिला के लिए, इतना मुश्किल होगा वो सब बर्दाश्त।
1: और आप देखिए किसी भी विवाह बंधन में जब स्त्री और पुरुष बनते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि दोनों का जो सहयोग है परिवार को या घर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही विवाह संपन्न हो जाते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि सभी पुरुष ऐसा करते हैं,
0: कुछ कुछ केसेस
1: हैं, ज्यादातर मामलों में घर की जिम्मेदारी का जो मेडल है वो महिला के गले में डाल दिया जाता है, वही उसको संभालेगी। अगर उसका पति शराब पीता है तब भी उसी की गलती मानी जाती है, चाहे वो पहले से ही उसमें कितने ऐब है। लेकिन जैसे ही, और हमारे समाज की एक और भी धारणा है कि अगर आपका बच्चा निकम्मा है, वो काम कुछ नहीं कर

0: रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, शराब पीता है या गलत संगति में पड़ गया, उसको सही संगति में लाना है तो उसकी शादी कर दो।
1: हाँ,
0: और ये जो चीजें हैं ये घरेलू हिंसा को बढ़ावा
1: देते हैं,
0: क्योंकि बिना सोचे समझे हम अपने बच्चे को हम नहीं संभाल पाए, उसको एक अनजान लड़की को हम सौंप देते हैं कि वो उसकी गलतियों को सुधारेगी, तो
1: और फिर भी अगर सिचुएशन सही, ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर बचपन से बिगड़ा हुआ है तो वो एकदम से कैसे ही सुधर जाएगा। होता है कुछ केसेस में कि किसी के लिए जो मतलब लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको लेकर वो मतलब इतने एक तरह से बोल सकते हैं उनके साथ इतने अटैच होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि वो सुधर भी जाते हैं, ऐसा नहीं सकते हम कि सभी केसेस में।
0: लेकिन देखिए ना, जिसको हम खुद नहीं सुधार पाए जिम्मा हम ये मतलब हम यहाँ लड़की के ऊपर डालेंगे।
1: यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का ये उम्मीदें लगाना
0: जी,
1: ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेना कि हम तो नहीं कर पाए और कोई लड़की आएगी तो वो इसे संभाल लेगी, वो इसे सुधार लेगी।
0: बिल्कुल,
1: वहाँ पर वो गलत,
0: यही बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, क्योंकि यहीं से घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है। हम अपनी उम्मीदों के, जब हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ नहीं होता
1: नहीं
0: है तो हम प्रताड़ित करते हैं उस लड़की को। और इस तरह के कई किस्से जब हमारे सामने आते हैं, आप अगर फैमिली कोर्ट की ओर करें कभी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़की को इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो समय पर पति के लिए खाना नहीं बनाती है, उसने कपड़े नहीं धोए, या उसने फलां काम नहीं किया, या उसने ये नहीं किया, वो बच्चों की केयर नहीं करती है
1: जी,
0: और इस तरह के। और साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो घरेलू हिंसा को उकसा रही है, उससे घरेलू हिंसा के मामले जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो हमेशा ही पीड़ित रहता है, क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य का सहयोग उसको नहीं मिलता है। अगर पति पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है तो ससुराल वाले उसको रोकते नहीं है, उसको समझाते नहीं है, और इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती है।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी, परिवार का सहयोग होना ही तो हमारे लिए, क्योंकि एक लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर 23-24 साल जिस घर में उन्होंने बिताए हैं उस माहौल को एकदम से छोड़कर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, तो वो वहाँ पर जा रही है तो उसे ऑब्वियसली सहयोग की जरूरत होती है। और जैसे कि आपने कहा कि पति उसे मार रहा है, पीट रहा है, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो कुछ नहीं बोलते, और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर पेरेंट्स जो है घरेलू हिंसा लड़की के साथ कर रहे, तो वहाँ पर उसका जो फ्रेंड सर्कल है या घर वाले, अगर वो किचन में अपनी वाइफ की हेल्प करवा रहा है तो वहाँ पर बातें ये आ जाती है कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया।
0: बिल्कुल,
1: ये तो अब किचन, पहले तो आज तक किचन में गया नहीं, अब ये किचन में जाना शुरू हो गया। मतलब ये जब बातें शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं फिर भेदभाव वाली बात तो आ ही जाती है।
0: मनोरंजन की ओर से हमारा थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, क्योंकि मुद्दे जब हम गंभीर ले लेते हैं तो हम पहले ही बोल चुके थे हम गंभीर हो जाते हैं। तो रुचि का एक प्यारा सा गीत अगर आप हमारे दोस्तों को सुनाएं,
1: तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की तरफ, उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी इन उड़ानों के साथ।

0: 291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपने आरजे दोस्त रुचिका और रूमा के साथ। जी तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: और रुचिका, हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की।
0: जी
1: तो घरेलू हिंसा भी कई प्रकार की है, इसको हम 4 प्रकार से तो डिफाइन कर ही सकते हैं।
0: जी
1: जैसे पहला हमने कहा मारपीट करना। व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य है जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है, उसको बिना वजह के टॉर्चर कर रहा है। इसके साथ साथ महिला को खाना नहीं देना। कई जगह ऐसा भी होता है कि घर का पूरा काम करेगी लेकिन उसको खाना तक नसीब नहीं होता है, उसको खाना नहीं दिया जाएगा। अगर उसको स्वास्थ्य की जरूरत है तो उसको मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाएगा, नॉर्मली उसका घर में रख के सामान्य उपचार किया जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि उस महिला को किसी भी पड़ोसी से या परिवार के दूसरे सदस्य से बात तक करने की इजाजत नहीं होती है, उनसे फोन छीन लिए जाते हैं, वो अपने मायके में बात नहीं कर सकती है। तो इस तरह से दूसरी हम बात करेंगे आर्थिक जो उत्पीड़न है, वो भी हमारी बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने पति की इनकम पर निर्भर रहती हैं। तो उनको जानबूझकर उनको खर्चा नहीं दिया जाता है, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। ऐसे में वो महिलाएं छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने पति या सास ससुर पर निर्भर रहती हैं, या फिर उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मायके वालों से मदद मांगनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम मैं बात करूं तो मानसिक जो तनाव है, जो मानसिक उत्पीड़न है, ये तो बहुत ही जहर की तरह काम करता है किसी भी महिला के जीवन में।
0: जी।
1: क्योंकि देखो रुचिका, जब हम शारीरिक या आर्थिक रूप से अगर हम संपन्न हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें छोटी छोटी बातों के लिए उलाहने दिए जा रहे हैं, हमारे शारीरिक किसी बनावट को लेके या किसी और वजह से हमें तंग किया जा रहा है, तो ये इतना बड़ा टॉर्चर होता है कि महिला किसी से बोल नहीं पाती है और अंदर ही अंदर वो कूदती रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं और महिलाएं कई बार अपना आत्म संतुलन तक खो बैठती हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि आपका जो ससुराल है वही सब कुछ है, यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट भी होती है, उनको ताने भी दिए जाते हैं, तो आपने झेलना है ये सब चीज और मायके वापस नहीं आना है, क्योंकि कई बार मायके वालों का सहयोग भी हमारी बहनों को नहीं
0: मिल पाता है।
1: तो ऐसे में वो अंदर ही अंदर घुटती जाती है। तो इन चीजों से हमें अपनी बहनों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर महिला को पता है कि उसके हक में कोई कानून है, कोई सरकार उसके लिए उसकी मदद कर रही है, तो जानबूझ के वो इस तरह की मुसीबत को नहीं झेलेगी और उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी।
0: जी बिल्कुल। और अभी हमें फिलहाल अपनी इस गंभीर बातचीत से थोड़ा सा निकलने के लिए रास्ता ढूंढना है।
1: बिल्कुल। और ये रास्ता जाता है हमारे संगीत की लहरियों से।
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आप सभी इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो रुमा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा केस भी होता है, मैक्सिमम आज के डेट में आपको ये देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, तो वहां पर भी घरेलू हिंसा की शिकार जो है एक महिला, जो घर पर घर में जो एक वाइफ के नाम पे वो घर में लेके जाते हैं एक महिला को, तो उसके साथ वो एक तरह से उत्पीड़न, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार बोलते हैं ना, कि जब प्यार वाली जो फीलिंग है वहां से कट जाती है तो फिर हमें नहीं समझ में आता है कि हम उनसे किस बिहेव में बात कर रहे हैं, गुस्सा कहीं और का है, हम निकाल कहीं और रहे हैं।
1: बिल्कुल, और पुरुषों के पास एक, हमारे पुरुष दोस्त नाराज ना हो जाए, बट एक अपने आप को एक राइट समझते हैं कि घर में मेरी पत्नी है तो हम उसके साथ अपने दिन भर का तनाव, चाहे वो काम का तनाव हो या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कोई तनाव हो या किसी भी आर्थिक परेशानी की वजह से तनाव हो, वो आज आके अपना जो तनाव है वो अपनी पत्नी के ऊपर ही उड़ेल देते हैं। और जो गलत बात है, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर हम अगर अपने पार्टनर के साथ हम करते हैं, तो जो कहते हैं ना, गृहस्थी की गाड़ी है जो दो पहियों के साथ मिलके चलती है, एक भी पहिया अगर डावाडोल हो जाता है तो वो गृहस्थी की जो गाड़ी है वो अपनी पटरी पे कभी नहीं लौटती है। और इसका जो असर है वो हमारे जीवन में हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग और बाकी के जो और भी सदस्य होते हैं वो भी इन चीजों को झेलते
0: हैं। बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि अब पहले का समय होता था कि बिना फेस देखे शादियां हो जाती थी, चेहरा भी नहीं देखने को मिलता, शादी वाले दिन चेहरा
1: दिखाई देता था। आप देखिए कि वो शादियां बहुत अच्छे से
0: निभ रही है और निभी है आज तक।
1: बिल्कुल,
0: और अब जो है, अभी बच्चे 14-15 साल के हो नहीं रहे हैं कि बस उनको एक तरह से लव अफेक्शन जो है वो एकदम से हो जा रही है, लव अट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं एक शौक सा बन गया है। तो उसी तरह से बच्चों में तो खैर है ही है, पर जो शादीशुदा लोग हैं उनमें भी ये बहुत
1: आजकल, जाने कहा ना, हम लोगों को आदत हो गई है यूज एंड थ्रो की।
0: बिल्कुल,
1: हम लोगों को आजकल इस तरह के, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में भी शर्म नहीं आती है, हम लिव इन रिलेशन में रहने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं, हम एक पत्नी के होते हुए हम कई तरह के अफेयर्स रख लेते हैं, और महिलाओं में भी इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, वो भी पति के होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही हैं, या उनके भी कहीं ना कहीं किसी अनैतिक संबंधों में भी हम जुड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं हमारे समाज को पतन की ओर तो लेके जा ही रही है, साथ ही साथ हमारा जो मानसिक जो विकास है वो भी अपनी धुरी से थोड़ा पीछे हट गया है। तो इन चीजों के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, अपने समाज में एक तरह की जानकारी और जागरूकता फैलाने की जरूरत हमें है, ताकि हम इन चीजों से हटकर अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें और हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए हैं, उन मूल्यों को हम बना के रख सकें।
0: बिल्कुल, तो अब मैं ये हम ये बात कर लेते हैं रूमा जी, कि अक्सर जब महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ बात करें, जाते जाते हम ये सभी को ले लेते हैं, सिर्फ किसी एक पहलू पे हम बेस नहीं रहते हैं, तो जैसे किसी के भी साथ ये घरेलू हिंसा वाला व्यवहार जो है हो रहा है, तो वो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे खुद की मदद कर सकते हैं और कानून की तरफ से उन्हें किस तरह से मदद मिल सकती है?
1: देखिए रुचिका जी, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था जो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, और उसके बाद हर कोर्ट में भी, थानों में भी और कोर्ट्स में भी इसके ऊपर काम होता है। अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट हो रही है, उसको जबरन किसी काम के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे उसका पति ही उसके साथ जबरदस्ती उसको यौन उत्पीड़न कर रहा है, या किसी भी प्रकार दहेज या अन्य उत्पीड़न अगर उसके साथ हो रहा है, तो महिला अपने नजदीकी थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। इसके साथ साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में डोमेस्टिक वायलेंस सेल है, जहाँ पे महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से वो अपना मुकदमा जो है वो कोर्ट में दायर कर सकती हैं। और अगर किसी के खिलाफ घरेलू हिंसा का ये मामला साबित हो जाता है तो कोर्ट सजा देता है, अगर महिला के साथ मारपीट हुई है तो थाने में FIR करवा सकती हैं, और इसके साथ 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को अपनी हेल्प के लिए बुला सकती हैं।
0: जी बिल्कुल, तो आपने ये तो बता दिया कि हमारे जो भी जिस किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो, खासकर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा वाला, तो वो कैसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। और फिलहाल हमारे दोस्तों को अगर कार्यक्रम से जुड़ी कोई सुझाव आप देने हैं या कोई उनके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है इस विषय से संबंधित, तो वो कैसे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, आप जाते जाते ये भी बता दीजिए।
1: बिल्कुल रुचिका, अगर हमारे दोस्त

0: चाहते हैं हमसे इस विषय के संदर्भ में कोई भी जानकारी, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फोन के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, हमारा मोबाइल नंबर है 9418431223। आप कभी भी इस नंबर से किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी या जो भी जानकारी होगी, हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।
1: जी तो रूमा जी, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा समय हो गया है हमारे दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, और अब समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का।
0: जी
1: तो फिर होगी दोस्तों आप सभी के साथ मुलाकात। आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान अपनी आरजे दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी तो इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता और देखता रहता तो इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

श्रोताओ, रेडियो कंचन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
3: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
3: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
3: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही स्वागत है कने तो हाँ सारे ही ठीक ठाक होने न कने रोजाने हैं अपना जीड़ा कामकार है से करा दे उन्हें न काम कार करने तो हाँ सारे ही रेडियो गुंजन धर्मशाला करने भी जुड़ी आने हैं क्योंकि काम भी करी सकते कने इसी करने तो हाँ अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुनी सकते या मोबाइल फोन चा रेडियो जड़े से ऑन करी दिया या रेडियो सेट पर रेडियो सुनना जड़े से तो हाँ शुरू करी दिया क्योंकि कार्यक्रम जिसमें जड़े से 2:02 कार्यक्रम जो है ना तस्मय जड़े से ज़रूर इस कार्यक्रम दा शुरू हुई है कने ये सफ़र तो हाँ तक रहना है 2 से 3 बजे तक ते सफ़र च बड़िया सारिया गल्ला बातें तो हाँ तक होनी है ना कने तो हाँ सारे भी आहां कने गलबात जड़े से ज़रूर अपनी पहुँचाई सकते दशो तो इसी कन्ने अहां पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से एक प्यारे दे गीत कन्ने कर देन क्योंकि हमेशा अहां ही बोल देन कि गीत संगीत जेड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है तो ज़रूर इस गीत कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से ज़रूर कर देन तो सारे भी इस गीत जो भी इंजॉय करा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी कार्यक्रम माटी दी महक भी जड़े से एंजॉय करा।

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है से तो हाँ तक रहें दो ते तीन बजे तक ता जरूर श्रोताओं तो हाँ सारे

0: भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्ने जुड़ी सकदे। अज कने दिने दी आहां गल करिए 7 जुलाई 2026 दी। तई दिन तुहां वास्ते भी बेहतर खास है कने हर दिन खास होंदा। तो अजकना जिहड़ा दिन है या आज यहाँ कार्यक्रम च क्या गल बात करनी है सभी जरूर तुहां तक पहुँचानी है। गल बात यहाँ ये करनी है कि बच्चियां दा जिहड़ा ख्याल है से रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर इहदे उपर अहां गल बात करनी है कने अहां दे पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हो ना कर दें तिना कने गल बात। हैलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है
1: ना
0: जी? अशोक जी क्या काम कार तुहां लगे या क्या करा दे?
1: आज मैडम छुट्टी करी है करेंगे अब
0: जी। अच्छा, आज जेड़ा इस छुट्टी की थी कने छुट्टी एंजॉय करा दे आज। जी तो अशोक जी आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन कि बच्चियां दा जेड़ा ख्याल है से रखना कितना ज्यादा जरूरी है ना जी?
1: नहीं, बच्चियां दा ख्याल बड़ी जरूरी है
0: जी। जरूरी है, ज्यादा जरूरी है ना जी?
1: नहीं जी, मिन जारी सिर्फ 7 बच्चे ना
0: जी। जी
1: दो दो दो दो
0: जी
1: शायद अभी आने
0: जी जी, क्योंकि छोटे बच्चे जेड़ा होंदे तिना दा ज्यादा ध्यान हमेशा पेरेंट्स दा रहंदा है रोल ना जी, कि पेरेंट्स किस प्रकार बच्चियां दा ख्याल जेड़ा है से रखदे ना जी। जी बरसात दा मौसम चलिया वैसे भी कने फिसनल जेड़ा से हर जगह फिसनल फिसनल होंदी ना जी। फिर कई बार बच्चे अगर छोटे बच्चे न ता तिना लाहां सिक्के वगैरा देन देन तो तिना सिक्कियां ते भी यहां बच्चे जेड़ा ना बचाई कर रखने ना जी। जी जी, क्योंकि हर जगह ते अगर अहां ध्यान रखदे न ताई कने कुथी ना कुथी तुहां हर दिन कोई ना कोई न्यूज जेड़ा है से सुनदे रहंदे न जी।
1: जी जी जी
0: जी, ता पहले ते जी जी जी डाडी साइड जेड़ा एक श्रोता थे तिना भी दस्या था ना जी। जी तो अगर हाँ खुद ही पहले ख्याल रखते न तो फिर बच्चे भी सेफ रहते न कने फैमिली भी खुश रहती है ना जी।
1: जी
0: जी जी जी जी जी जी अशोक जी, आज तुम कुंदिया गीत सुनना पसंद करके खानिया बंदिया दो रोटियां। जी जरूर ए फरमाइश भजन तो हां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद।
0: अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: धन्यवाद मैडम जी, ठीक ठाक मैडम जी। तो ठीक ठाक न मैडम जी?
0: जी अहां भी ठीक ठाक हैं जी। तो हां अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
2: सुनील कुमार बोल रहे हैं मैडम जी, कोठियों जी लौटते हैं
0: जी। सुनील जी क्या काम कार तुहां छेड़िया आज क्या करा दे?
2: कुछ नहीं मैडम जी, बैठे मैडम जी।
0: जी अच्छा बैठे हो, तो मेरी गल बात तुहां जरूर सुनी ले होनी कि उनी रेडियो सेट ऑन किया।
2: हाँ जी सुनी मैं गल मैडम जी।
0: जी तो तुहें क्या लगता, तुहां कितना की सा गल ते सहमत हन कि बच्चों का ख्याल?
2: बच्चों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है मैडम जी। हुण जियां दिखा मैडम जी, हुण चुल्ही ला बहंदे मैडम जी, बच्चे क्या मतलब कि ना लकड़ मां तीड़दे
0: जी,
2: इत्थे भी बचाना पौना।
0: जी जी, ये भी बड़ा सही पॉइंट तुहां बोले कि कई बार अहां आगे बाल दे ना ता से बच्चे जेड़ा ना तिना जो वैसे भी शरारत करने दा मौका ढूंढ दे ना जी। है
2: मैडम जी ना समझ आउंदी तिने ते किने क्या पता होना अग्गे ही क्या है।
0: जी जी
2: जी, और दूजी गल की मैडम जी, दिखा हुण रोड़े कंडे हुण सड़क मतलब रोड़े कंडे घर होंदे
0: जी जी,
2: ते कई बच्चे बाहर भी निकल जांदे रोड़े च
0: जी,
2: ते तिथे तक ध्यान रखना पैंदा
0: जी। तिथु भी ध्यान रखना पौंदा। कई बार हाँ अगर सड़क सड़क से चले हो ना, पैदल चले हो ना, तो
2: बिल्कुल।
0: बच्चा जो उसी साइड रखा जिस साइड तिना दी सेफ्टी है ना जी,
2: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी,
0: क्योंकि कई बार हाँ अपने आंखों देखी भी दिखते ना कि पेरेंट्स बच्चे जो उस साइड चलाते ना जिस साइड कोई बस चली हो है या कोई व्हीकल चल रहा है ना जी
2: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी,
0: जी तो हर चीज़ का ख्याल रखने की
2: हाँ
0: जरूरत
2: जी,
0: होंगी ना
2: हाँ
0: जी।
2: जी मैडम जी, ध्यान रखना जरूरी है मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी, आज तुम कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
2: जो गाना सुनाई ने मैडम जी, ना कर मेरो मेरी,
0: जी, ना करो मेरो मेरी
2: हाँ जी, अजी कौंडल दिया आवाज़ से पुराना मैडम जी।
0: जी। जी जरूर जी, ये फरमाइश
2: धन्यवाद
0: तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: मैडम जी, धन्यवाद जी,
0: जी।
2: नमस्ते।
0: ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला, तुह सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। दर्शक तो कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने तुह सारे जो ही ले कर चलते न फरमाइश दी ओर, सुन दे इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ए गीत ए फरमाइश फिर यहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने यहाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। दर्शकों कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है पहले तो नंबर तुह तक पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। दर्शो तो नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर तुह कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। दर्शो तो गलबात हाँ जिड़ा कार्यक्रम दे सफर च करा देन से करा देन कि जिड़ा छोटे बच्चे न तिना दा ख्याल जड़े से किस प्रकार रखन कने ख्याल रखना बनता भी है। छोटे बच्चे होंगे वैसे भी अगर बरसात दे मौसम दी अहां गल करिए ता हर मौसम च जड़ा ख्याल है से चाहे बच्चे न चाहे बुजुर्ग न हर कुसी दा जड़े से रखना चाहिदा। दर्शो तो बरसात दे मौसम च अगर अहां बच्चें दी गल करिए जड़ा छोटे बच्चे न तिना दी ता तिना दा ख्याल जड़े से फिसनल दी अहां गल करिए या जड़ा बिजली है तिदी गल करिए क्योंकि हर जगह बच्चों का जड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी। अगर हाँ बच्चों का ख्याल रखते न ताई अहां अपना जड़ा काम है सभी करी पाते न क्योंकि तिना का ख्याल रखना भी जरूरी है। फर्ज जड़ा है से अहां जो हमेशा सुखा जड़ा है से रखना है क्योंकि कई बार होंगे ना कि हाँ अपना फर्ज पर पानी भी है कने बच्चे अगर तू गुमा दे होन ता बच्चा पौने दा जिड़ा खतरा है सभी बनिया रहिंदा तो हर चीज़ दा जिड़ा ध्यान है से रखना ज़्यादा जरूरी है। तो शो तो इसी कन्ने हाँ कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न सुनते नि सा प्यारी दी फरमाइशा जो प्यारी दे भजने जो

0: 92.2 मेगाहर्ट्स पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे सुनिया ये गीत ई फरमाइश। इस गीत ई फरमाइश आहां जो आयु वे कोठियां जलोट ते कने तिना दा नाम वे सुनील जी। सुनील जी तक आहां ई फरमाइश पहुँचाई कने तुहां सारियां भी इंजॉय कीती। इसी कने आहां कार्यक्रम च गलबात करा दे न कि जेड़ा छोटे बच्चे न तिना दा जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार जड़े से रखन। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों दा जेड़ा ख्याल है से बड़े अच्छे तरीके ने रखते न, क्योंकि जैलू बच्चा छोटा होंदा है तो छोटे होंदे ते ही पेरेंट्स जड़े से बच्चे दा ख्याल जड़े से रखना शुरू हो जाते हैं। कने ख्याल रखना तो बनता भी है, क्योंकि बच्चे जो इतनी समझ नहीं होंदी ना, जलू बच्चे जो समझ आई जाती तल से अपना ख्याल रखना खुद ही शुरू हो जाता। तो हर जगह अगर हाँ बच्चे दा ख्याल जड़े से रखते न, चाहे से बरसात के मौसम च रखते न या कोई भी, कई बार बच्चे जड़ा न से घर ही कोई शरारत तिना जो कोई ना कोई खिलौने तो चाहिए होंगे खेलने जो, पर तिना जो ये पता नहीं होंदा कि सही खिलौने जड़े से तिना जो कुथी ना कुथी नुकसान दे करी भी जाते न, चाहे हाँ जड़ा पैसे न जड़ा सिक्के न तिना दी गल कीती थी। तो सभी कई बार है बच्चे ही सोचते कि यहाँ तो इतने खेलना है, पर कई बार जड़े से सही सिक्के जड़े से बड़ा नुकसान दे करी चली आते। ये छोटा मोती है, मोती भी कई बार अगर बच्चे जो आसपास घरे च दुसदा है तो से तिस कन्ने भी खेलना शुरू हो जाते न, या तिस मोती कन्ने खेल देता है न, पर खुद जो नुकसान भी बड़ा पहुँचाई लेंदे न, या तिस मोती जो खाई लेंदे न, या क्योंकि कई बार हाँ अपने घरे च भी दिखते न या आसपास भी दिखते न, या कुछ ना कुछ तो हाँ हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ जड़े से जरूर सुनते न। तो हर जगह ते बच्चों का जड़ा ख्याल है से रखना पेरेंट्स का काम है। कने पहले होंदा था कि ज़्यादातर घर जड़ा न से संयुक्त परिवार जड़ा न से दिखने जो मिलते थे, पर आज के दौर की गल करिए हर जड़ा एकल परिवार है से तो जो दिखने जो मिला था। कने तालू दादा दादी का जिहड़ा प्यार है सभी जरूर मिलता था। कने बच्चों का जिहड़ा ध्यान है सभी जरूर जिहड़े से दादा दादी रखते थे। तो इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न? मेरी गल बात भी जरूर तुहां सुनी ले होनी है जी।
1: जी
0: तो तुहें क्या लगता किस प्रकार बच्चों जो किस किस चीज़ ते बचाना चाहिए या किस चीज़ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: बच्चे एक तो साफ सफाई ते बचाना चाहिए।
0: जी
1: जी नहीं आप गंदे ये पानी पूनी जना खेल लो।
0: जी जी
1: ना बाकी जी नहीं भाई कोई चीज दानी तो ही खाई के दानी।
0: जी जी
1: बाकी ता
0: जी चलो सहता बच्चे बड़े ता थोड़ी समझ आई जाती, पर जेड़ा छोटे बच्चे होंगे तिना जो समझ नहीं होंगी ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: क्योंकि छोटी छोटी चीजा का ध्यान जड़े से रखना पौंदा ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो से ध्यान पेरेंट्स ही रख गए ताई बच्चे जरूर उस गल जो समझ दे ना जी।
1: जी
0: जी जी तो हर चीज़ का ध्यान रखना जिहड़ा इसे जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: गीत तो सुनाई दिया
0: जी कुंदिया
1: बाबिया सुनाई दिया
0: जी बाबे दा कोई भी गीत सुनना है तो हाँ
1: कोई भी सुनाई दिया
0: जी जरूर जी तुहां दी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी।
1: ठीक
0: जी दशो तो जिंदगी जेड़ा से कितनी प्यारी है कुछ लाइना जेड़ा न से जरूर तुहां तक पहुंचानियां न। ये जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना से थोड़ा दिया थकान भरा है कने अपने दा अपने पर जड़े से इल्ज़ाम बहुत हैं क्योंकि अज कने दूर दी यहाँ गल करिए तो हर कोई शिकायत करने पर आंदा हर कोई शिकायत करने पर है पर अहाँ ये सोच विचार नहीं करते कि अपने दा अपनापन अहाँ च होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कने जड़ा शिकायतों दा दूर है से हमेशा जारी है। अहाँ छोटी दी गलती कर देन तो अहाँ उस गलती जो एक बड़ा रूप जड़ा से देन देन पर अहाँ ये नहीं सोचते कि एक छोटी दी माफ़ी जड़ा से उस गलती जो सुधारींदी है क्योंकि हर दिन अगर अहाँ कोई ना कोई गलती कर देन तो यह गलती तो अहाँ सीख भी जरूर लेंदे न क्योंकि जिंदगी है जिंदगी दा सफ़र है थोड़ा थकान भरा भी है थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि हर दिन अहाँ कुछ ना कुछ नया जड़ा से अपनी जिंदगी च सीखते हैं कने जिंदगी अहाँ जो सिखाती भी है तो हमेशा अच्छे कर्म करा अच्छा कर्म कर देन ताई अहाँ अपनी जिंदगी जो और बेहतर बनाई पाते हैं कने तुहां सारे इस टाइम क्या करना है इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ना है कने जितने भी श्रोता हाँ जो फेसबुक लाइव दिखा देन तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तो श्रोताओं तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र च अपनी पसंद दा जेड़ा गीत है फरमाइशी कार्यक्रम है तो तुहां सारे भी अपनी फरमाइश पहाड़ी गीत जेड़ा है से ज़रूर सुनी सकते तो जरूर हाँ कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ाना है कने इसी कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचानी है अगली फरमाइश अहां तक पहुंची हो वे पर सैप दे माध्यम ने पर अगले जेड़ा श्रोता है ना से अहां कन्ने जुड़ चुके हैं ना पहले कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी। तो
2: हाँ मैम मैं जियो से बात कर रही हूँ आपके।
0: श्रोताओं कॉल जड़े से डिसकनैक्टिड हुई हो तो जरूर अहाँ कार्यक्रम का जड़ा सफर है से अगे बढ़ाना है कने तुहां तक गीत संगीत जड़े से जरूर पहुँचाना है क्योंकि जिंदगी का जड़ा सफर है से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर है पर अहाँ इस टेढ़े मेढ़े जिंदगी के सफर जो जरूर इंजॉय करना है।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश बूटा डाली दा गणेश गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए वट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है चरणदास जी कने से रहने आए न खन्यारा ते अगले जरा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
1: मैडम जी मैं टिल्लू ते बोला दा
0: जी। टिल्लू ते बोला दे
1: जी। मेरा नाम करतार करतार चंद है।
0: करतार जी क्या काम कार तुहां लगाया कने क्या हाल चाल है टिल्लू वाले दे?
1: बस बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास, सारे ठीक हैं टिल्लू वाले
0: जी। ठीक ही चाहिए ना जी।
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो मौसम कदे है उस साइड
1: जी?
0: मौसम जेड़ा है से कदे है उस साइड टिल्लू
1: वाले? मौसम जाल धूप लग गए तो बड़ी गर्मी लग गई ठीक है ना। जाल हूँ बर्फ आई यही था जोरे देनी बर्फ
0: जी तालू ठंड लगी पौधी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, सही है ना कि जालू बर है तालू ठंड। जी जी
1: मैडम जी बाद में सुनाइए नहीं ले
0: लंका दे राजिया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता करतार जी आज यहाँ जेड़ा गल बात करा दे न से करा दे न बच्चियां दे ऊपर की बच्चियां दा जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार हाँ रखना चाहिए कने रख दे न तो तुहें क्या लगदा?
1: हाँ जी या मेरा भी पोतरु
0: जी दादा तो जो ज्यादा पता होना ना जी।
1: बड़े बड़ी बड़ी जी चीज बड़ी देख रेख करना पौंदी है, बड़ा शरारती है
0: जी। अच्छा बड़ी देख रेख करना पौंदी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, दिन तो स्कूल चली जाता स्कूल एक बजे आंदा फिर थोड़ी रेस्ट कर लंदा दो ढाई बजे तक तीन बजे तक
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी, फिर तुम्हारी तुहांदी ड्यूटी जिहड़ा इस ते स्टार्ट होई जांदी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। चलो ड्यूटी देना भी जरूरी है ना जी, बच्चे बच्चों का ख्याल रखना भी जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है जी, ज्यादातर बरसात का बड़ा ज्यादा जरूरी है
0: जी, बड़ा ज्यादा क्योंकि भरोसा नहीं होता ना जी, जीजू कंडुए का भी डर होता ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, आजकल फिसलन का डर होता ज्यादा
0: जी जी, फिसलन का तो बड़ा ही ज्यादा है ना जी।

अला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने तशो तो इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तो तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने इसी सफर कने तो जरूर अहां कने भी जुड़ देना कने अपनी जेड़ा गलबात है से कर देना गलबात कने जेड़ा तुहन दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशां सभी अहां जरूर तुहां तक पहुँचा देना। तशो तो सागर दी अहां गल करिए ता सागर च अगर एक मोती पे आंदा है से मोती अगर सागर च पे आंदा है तो है ढूंढना जेड़ा है से बिल्कुल आसान नहीं होंदा क्योंकि तिस जो ढूंढने वास्ते बड़ी मेहनत जेड़ा है से लगती है। कने अगर अहां इंसान दी गल करिए इंसान दा जेड़ा मन है उस जो समझना भी बड़ा कठिन है। तो अगर अहां हमेशा खुश मन कने खुश चेहरा रख देन तो जीवन च अहां हर संपत्ति जेड़ा है से पाई लेंदे न। तो अहां हमेशा बोलते हैं न कि खुश रहा हंसते रहा क्योंकि अहां खुश रहेंदे न तो अहां दी फैमिली भी खुश रहती है। कने अगर अहां थोड़ा दिया अपने चेहरे जो मुरझाई देन कई बार तो अहां अपने घरे च ही दिखते होने न कि अगर अहां थोड़ा दिया उदास होंदे न तो कुथी ना कुथी अहां दी फैमिली भी तिहा उदासीपन दा जिहड़ा उदासपन जिहड़ा है से बनी आती है क्योंकि अगर अहां पेरेंट्स जो हमेशा अच्छा खुश रख देन या तिना जो प्यारे ने गलबात कर देन तो सभी खुश हो जाते न। कने अगर अहां हमेशा गुस्से ने बोल देन हमेशा गुस्से च रहन देन तो कुथी ना कुथी तिना जो भी बुरा लगता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना तुहंदा काम है कने अहां भी जरूर तुहंदा जेड़ा ध्यान है से रख देन। तो तुहां सारे जो ही ले कर चल देन फरमाइश दी ओर क्योंकि इंतज़ार जिहड़ा तुहां जो रहिंदा है कि तुहांदियां जिहड़ा फरमाइशां ने से जरूर तुहां तक पहुँचानियां ने। तो ये फरमाइश ये भजन अहां पहुँचा देन मंगल जी तक कने से रहने वाले ने चैतड़ू ते।

तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला दर्शकों तुहा सारे ये भजन इंजॉय किया कने फिर यहाँ वापिस आईन अपनी गलबात उपर। अजकना जिड़ा दिन 7 जुलाई का ये दिन मंगलवार का ये दिन तुहा जरूर इंजॉय करा दौने कने कलकने दिने दी अहां गल करिए 8 जुलाई 2026 दी बुधवार दी। हुण तुहां सोचा दे होणे नी कि कल्ले दी गलबात कयो छेड़ी, कल्ले दी गलबात अहां इहदे वास्ते छेड़ी कि कुछ जानकारियां जिहड़ियां ने सभी तुहां तक पहुँचाणी आउंदियां समय दे अनुसार। तां जिहड़ा 9 बजे ते लेकर 5:30 बजे तक जिहड़ा इस विद्युत आपूर्ति जिहड़ा इस बाधित रहनी है कने रहनी कुथू कुथू है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाइंदे ने। 11 kV दाड़ी जिहड़ा फील्डर है तिहदे अंतर्गत जिहड़ा शीला चौंक है कने जिहड़ा दाड़ी गैस एजेंसी फ्री जिहड़ा लुंगड़ू चौंक है अमूल मिल्क शॉप जिहड़ा इस है तिथू भी जिहड़ा जितने भी जिहड़ा दाड़ी दे आस पास क्षेत्र हैं तिथू जिहड़ा इस है बिजली जिहड़ा इस है जरूर बाधित जिहड़ा इस है कल रहनी है। तो तुह सारी अपने जिहड़ा काम मन से 9 बजे ते पहले पहले कर लेने ने क्योंकि अहां अपने काम अगर समय के अनुसार करी लेंदे ने तो अहां जिहड़ा काम मन से भी अहां दे अच्छे तरीके ने हो जांदे ने। तो थोड़ा देर तुह भी अपना जिहड़ा सहयोग है से जरूर देना है कने इसी कन्ने जिहड़ा 11 kV बगली फील्डर दे अंतर्गत जिहड़ा जितने भी लगते गाँव हैं तिथु भी जिहड़ा बिजली जिहड़ा से कल बाधित रहनी है 9 बजे ते लेकर 5:30 बजे तक। तो जरूर तुहां जिहड़ा से कुथू कुथू बिजली बाधित रहनी है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाइंदे न। मटोर बगली अंसोली पटोला घना पुराना मटोर चैतड़ू मस्तपुर जिहड़ा भी आस पास क्षेत्र हैं तिथु जिहड़ा से बिजली बाधित जिहड़ा से जरूर रहनी है 9 बजे ते लेकर 5:00 बजे तक। तो जरूर ये जानकारी तुहां तक पहुँचाई थी है कने तुहां सुनी भी ले होनी है कि कुथू कुथू जिहड़ा से बिजली जिहड़ा से कल बंद रहनी है। तो समय के अनुसार अपने जिहड़ा काम कार हैं से तुहां करी लेने ने कने अहां भी समय के अनुसार अगे बढ़ते हैं कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं।

ट्रे करा देना कने भजन दी फरमाई शाह जो आई हुए करतार जी दी कने से जरूर इसा फरमाइश जो अपनी है जो भी इंजॉय करा देने ने कने कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है जो भी इंजॉय करा देने ने तो शो तो जिंदगी दा जिहड़ा सफर है जिंदगी दा जिहड़ा सफर है अगर अहां मनी लैंदे न तो मौज है कने अगर अहां नहीं मनदे न तो हर दिन जिहड़ा समस्या जिहड़ा से अहां जो रोज न रोज रोज कोई ना कोई समस्या जिहड़ा से जिंदगी दे सफर च चली रहिंदी है ना कल अहां वास्ते रुकद है ना आज अहां वास्ते रुकद है जीवन का हर पल अहां वास्ते अगर अहां हर जीवन के पल जो इंजॉय करते हैं सही अहां दा अपना पल है क्योंकि कई बार अहां ये सोची करी चलते हैं कि अजकड़े दिने जो ना इंजॉय करी करी अहां कल दे बारे च सोचना जिहड़ा से शुरू हो जांदे कई बार तो अहां ये भी सोचते कि ठीक है बच्चों के बारे च अहां सोचा देन अच्छी तिना जो परवरिश दे देन पर कुथी ना कुथी हाँ अपने जीवन जो भी नज़रअंदाज करना जिहड़ा से शुरू हो जांदे तो इसी कन्नै अपना जिहड़ा जिंदगी दा सफर है उस जो भी अच्छे तरीके ने जीना है कने जिंदगी जिहड़ा से खुश रहना अहां वास्ते कितना ज़्यादा है खुश रहा हमेशा अच्छा सोचा पॉजिटिव सोचा कने तो सारी ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है से उन्हां जो बोला दा कि तो सारी ही इस कार्यक्रम ते जिहड़ा से अनुमति

ले लिया तो जरूर समय के अनुसार अहाँ भी इस कार्यक्रम से अनुमति लैन दे ना कने तो हाँ सारी भी इन्हें अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुन दे रहा कने अपना जेड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा अपना ख्याल भी रखना है कने बच्चों का जेड़ा ख्याल है से सबसे ज़्यादा रखने की जरूरत है इसी कने जेड़ा बुजुर्ग हैं तिना का भी ख्याल जेड़ा से रखना है तो हाँ क्योंकि कने बुजुर्गों का जेड़ा ख्याल है से भी रखना है कने अपना भी ख्याल रखना है क्योंकि अपना ख्याल रखगे ताई तो हाँ बाकियों का जेड़ा ख्याल है से रखी सकते तो इसी कने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
6: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
9: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
9: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा।

0: इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
2: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
1: बात तो सही है।
3: दो मेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
0: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
0: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री। इधर डिटेल्स, उधर।
1: जीनियस पाटिल,
0: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
0: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर है वेडियो गुंजन। तो है ट्यून कर रहा और इंतज़ार तो भूना है मुझे लगता कि ना तो इंतज़ार थो कि ना तो बहुत सारे इंदे श्रोता जो इंतज़ार भी थो और इंतज़ार दी घड़ी ख़त्म भी हुई ने श्रोतों को जो किया हूँ कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ है। कार्यक्रम ने रहा तो है सब बाखूबी जानते हैं हिंदी अपनी गप्पा। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा हिंदी अपनी गप्पा मंच। तो सब श्रोता असोगे ज़रूर कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत किया सो हो सकते हैं और अपने क्षेत्र रही जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गलार खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ, रेडियो मंच दसने लायक जरूर हुआ। तो 7088879 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7088879 पर। तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर ही अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र की जानकारी वो गीत साझा कर सकते हैं। तो सभी पर दर्शकों और यह सब यह गल वास्ते बड़ा आबरू बुंदे हैं कि क्या इस समय मौसम हा धर्मशाला रहा है ना, इस गल वास्ते यह बड़े आबरू बुंदे हैं। तो आऊँ तुस वो दसना चाहता हाँ श्रोतों कि इस समय की सो 22 डिग्री सेल्सियस रे आसपास तापमान है ना, मेरी गल करूँ तो नमी इस समय 70% था। और बहुत सारे श्रोता असोगी जुड़ते हैं कॉल करते हैं, सभी ज़रूर जोड़ ले, सभी ज़रूर है कनेक्ट कर ले। लेकिन ये तथ्यों पहले श्रोतों आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रहा इस प्यारे दे गीत असोगी और आगाज तो बाद फिर अन्य जानकारी तो हो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपने गपन सो चल रही था। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आख मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा था। श्रोतो तो है सब कनेक्ट असुगे जरूर बची सकते हैं, कनेक्ट बुने वास्ते तुसू कॉल करना पैने हाँ 708-8-8-709 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी आऊगी साझा कर सकते हैं। यह गलर हमेशा वालों खास ख्याल रख के जानकारी साझा करने लायक जरूर बो अपना पसंदीदा गीत तो होने सकते हैं तो 708-8-8-709 पर कॉल करके नंबर आख मुक है आप फिर आऊँ शेयर करो साझा करो 708-8-8-709 पर।

0: चलिए सो तुम कार्यक्रम जो होगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच कुछ एक जानकारी तू हो गए साझा करते हैं सो तो अखबार दा तो ज्वालामुखी भी हा ज्वालामुखी खुंडिया रही हा खुंडिया क्षेत्र रहा और खुंडिया गचूरा में खुंडिया के ऐसा प्रोग्राम करना गचूरा तो सो तो बड़ा चंगर इलाका है और ज्वालामुखी तो काफ़ी ऊपर आगे जगह पहाड़ी मंच सो तो खुंडिया थाने क्षेत्र में कि ऐसो गाँव ग्रां ठंबा रे 14 वर्षीय छात्र कबीर राणा की ऐसो संदिग्ध आत्महत्याएं पूरा क्षेत्र के ऐसो झकझोर कर रख देता है। सो तो इस मामले में कि ऐसो भारतीय सेना में सूबेदार पिता भी शिकायत पर पुलिस है कि ऐसो स्कूल व प्रबंधन निर्देशक प्रिंसिपल हॉस्टल वार्ड और बस चालक के खिलाफ कि ऐसो FIR दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। जो परिजनोरा आरोप हा सो आरोप कह लेंदे हैं कि स्कूल और हॉस्टल में कथित मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना रे कारण तिन्या अकलौता अपना पुत्र किया सो इतना टूटेगो कि तिन्या आत्मघाती कदम चुके ले। पुलिस जो शिकायत में प्रदीप कुमार है ये दर्शवा कि वर्ष 2025 में तिन्या अपने बच्चे जो किया सो दाखिला लोअर सुनेता में अक स्कूल 9वीं कक्षा में करवाओ थो तथा तस स्कूल व हॉस्टल में किया सो तस बच्चे जो रखो तो शिकायत रे अनुसार पिछले कुछ समय थो कबीर लगातार हॉस्टल में न रहने रे गल किया सो करो करदा तो तिनिया परिवार तिनिया किया सो परिवार जो भी दसो थो कि हॉस्टल में तसी हो तैयोग किया सो मारपीट बुंदे हा और तसी हो मानसिक रूप थो परेशान भी करते हैं। 4 जुलाई जो स्कूल में अग घटना रे बाद बस चालक है कि ऐसो कबीर जो डंडा और कथित रूप थो किया सो मारो इतों बाद प्रिंसिपल MD और हॉस्टल वार्ड है कि ऐसो तिन्या भी किया तसी जो तयोग्य किया सो मारपीट करे पिता रहे बलना हा कि घर इंदे पर तिन्या अपने बेटे बेहद तनाव किया सो महसूस करो जाने से रे पुत्र घर हुआ तो तिनिया पुत्र रे चेहरे में कि सो बेहद तनाव किया सो महसूस करो अब माँ बुढ़े होता सब पता बंदा कि इंदा पुत्र रोज कदे बंदा और आज इसी तनाव अगस की गल रे चिंता था आज कदे आ किएं बिहेव करो करदा किएं रिएक्ट करो करदा किएं कण्यों करदा तिन्या समझो कि सोमवार जो स्कूल गाना तो पूरे मामले में प्रबंधन थों के सो गल करने हैं लेकिन तस्सी संजा के सो तिनी अपने कमरे में फंदा लटकाओ और अपनी जान के सो गवाई देते। पुलिस से किए सो पितारी शिकायत रहे आधार पर स्कूल रहे MD प्रिंसिपल हॉस्टल वार्ड और बस चालक वे खिलाफ के सो मामला दर्ज करी देता है। मामले भी जांच ASI वकेश शर्मा जो सौंपी है सो तो SP देवा संदीप धवले की ऐशो तो सो दसो अगे छात्र रे पितारी शिकायत पर पुलिस जांच करो कर दे हा मामले में जुड़ रही सभी पक्ष व बयान के अंश दर्ज बचो कर दे हैं। और बाकी में वह ज्वालामुखी वे मतलब अक छात्र अगर स्कूल प्रबंधन प्रिंसिपल हॉस्टल वार्ड नंबर और बस चालक किया सो इस प्रकार रही तसी मतलब टॉर्चर करता तो मानसिक टॉर्चर करता तो होता एक करखा चिंता रहा विषय था ज़रूर है सो तो और स्कूल थो तो बिल्कुल भी ऐसा भी एक्सेप्ट ना कर दे कि स्कूल अंदर किया सो इस प्रकार होगी मारपीट भुआ या इस प्रकार होगी क्या जो कसकी बच्चे जो प्रताड़ित किए गच्छा या इस प्रकार होगी तसी हरास किए गच्छा तई होगी हरासमेंट भुआ ये सब तो है बिल्कुल भी ना चाहते ना केवल दिन है ना बिल्कुल भी है ये सब ना चाहते दिल थो ना चाहते हैं। तो बहरहाल कार्यक्रम में जानकारी रहा सिलसिले चले रहना श्रोताओं तो सब बन रहे इस समय RJ सचिन कपूर सो गए और कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा हूँ करते हैं। अब सो जो ये ना समझ लगू करता कि सो प्रिंसिपल कदे भूले सो वार्ड जो हॉस्टल वार्डन आ सो कदे भूला है ना। बस चालक दे या भुल्ला, मतलब कि कस की हो इतना हरास करी देता तू है, कस की बच्चे हो या कस की बच्चे हो इतना हरासमेंट करी देता, इतनी क्या गल्ला के इतना बल देना कि बेशक दो थप्पड़ मारी करी ना तो है, दो थप्पड़ मारी सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी जवानी रा जो तुम्हारी जवान बंदे ना सो बहुत कुछ मायने रख दे, और तुम्हारी जवान ही किया सो तो तुम्हारी जिब भी किया सो तुस वो ही कसी भी शख्स तो किया सो दूर ले गए, और कसी भी शख्स रह गया सो रेडे ले इंदे हा, है ना। तो अपनी जवान जो बड़ा संभाली करे, मतलब बलना चाहिए कसी हो भी, और इतना फ्रस्ट्रेट किया सो आई थिंक ना करना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा कि बच्चा सो मरी गो है। पर चलिए क्या है, बलि सकते हैं फिलहाल तो ये बलि सकते हैं कि चलो माता पिता कोशिश कर दे इनके अपने बच्चे जो किया सो प्यार प्यारा होगी पालन, है ना। लेकिन बच्चा जाने बाहर रही दुनिया में गंदा था तस्वीर इस प्रकार होगी किया सो ट्रीटमेंट मोल दिया इस प्रकार होगी तस्वीर होगी गलबात बंदे दसो इन चीज़ा जो किया सो फॉलो ना कर सकता हा, इन चीज़ा जो सो मतलब सही ना सकता हा, और तेरे कारण कुछ एक गला बुच गंदी और फिर सुसाइड बंदा। लेकिन मुझे लगता है कि सूबेदार रहा तो तब फौजी तो अपने आप में बड़ा है, रूल रेगुलेशन जो लेकर पंचुअल बंदे ने हर एक चीज़ जो लेकर था न जाने कहो ये बुआ। बहरहाल जो भी बुआ पुलिस किया सो मामले भी जांच करू कर दिया, और आरोपी जो जितने भी आरोपी बुने थे सख्तों सख्त सजा किया सो जरूर मोलने हाशो तो। कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है इस समय हिंदी अपनी गप्पा तुंदे अपने रेडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला मंच, और लिया जी लेकर चल दे तू सब भी जो अकोर प्यारे दे अगी तारी कनारे जुड़ी रिया बनी रिया और सो गिशो तो जी जुड़ रहे न जिया बन रहे न। आइए हुन दिन तू सब भी प्यारे दे गीत इंदे श्रोतागण असोगी अक कनेक्टेड हैं, कनेक्ट कर देना और उस दिन कौन बलू कर देना। आज थोड़ी कभी इंदे स्टूडियो में के सो लाइट नहीं थी, रिवाज हुआ है फेसबुक रे माध्यम तो की सो लाइट सो लाइव ना इसी सकून देने। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते। चंद्र
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बलू देन और कड़ी थो बलू देन
1: से बोल रहा जी।
0: चातुड़ क्या ना जी तुंदा।
1: मंगल जी।
0: हाँ जी मंगल जी।
1: बस बढ़िया जी, तुम सुना।
0: बढ़िया मंगल जी, और कर लो।
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: लाइट
0: ओ उर तो सारे पैसे लाई थे मैं।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: और नोएडा जी।
0: नोएडा जी सब पुरानी जी तो है दसा नोएडा जी।
1: ਅਸਾਂ ਕਿਤਾ ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਾ ਨੋਈ ਦਾ ਜੀ ਆ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਝਾਂ ਦੇ ਨੋਈ ਦਾ ਜੀ
0: ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ
1: ਚੱਕੜ ਹੋਈ ਨੋਈ ਦਾ ਜੀ ਹੋਣੀ।
0: चले जी आए था नोई ताजी जानकारी रे माध्यम दो तुस तक पहुंचन दे है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जनाब कुंदी ने गीत होना क्या फरमाइश है तुंदी।
1: गाना तुहां सुनाई दिया ਅੱਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਕੱਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਮਾਤਾ ਗਾਣਾ ਹੈ।
0: ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਕੱਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸੋਏ ਗੀਤ।
1: ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਾਬ ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਠੀਕ
0: तो चलिए सो तुम कार्यक्रम जो हगू बढ़ते हैं तो सब बन रहे हैं समय आर जे सचिन कपूर सो गया, और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा के सो हूँ करते हैं, लेकिन चलते तू सब भी श्रोता जो और

छोदो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर तो सभी है वेड़ी गुंजन धर्मशाला ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा गन सो चल रही है ना। बहुत प्यारा दिया गीत तो है सभी है हूँ वक्त कुमली दूजा कुमली रा मेला और मेले जगाना जरूर हो है ना। सुनील राणा जी री आवाज़ में ये गीत हूँ श्रोतों तो है सभी है और बुढ़ड़ी सो माता कसेरे हो बुढ़ड़ी सो माता मेरी हो। चलिए कार्यक्रम जो हगो वृंदन आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुआ तुम्हें सभी रे रेडियो सेट में और सोगे सोगे फेसबुक वेजरिए भी लाइव के सो तो सोगी रूबरू हुआ हा। चलिए कार्यक्रम जो हगो वृंदन श्रोतों और कार्यक्रम में जो कुछ है जानकारी के सो तो सो गया है साझा कर लेंदे हिन। मानसून रे मानसून जो मद्देनज़र जन सुरक्षा जो कि असो प्राथमिकता दिंदे हुए इंदे जो उपायुक्त हिन जो इंदे डीसी साहब हिन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा वे जो डीसी हिन हेमराज भैरवा जी है ज़िला कांगड़ा मा आके असो नदी खड्डा खड्डा किनारे नाले रे किनारे और झरने रे किनारे और जितने भी मतलब जड़ी भी लैंडस्लाइड बनती है मतलब जो भी लैंडस्लाइड एरिया है जड़ी भेट बुच गेंदी है ना भट्टी किनारी है ना इस सभी किनारे गाने वैकिया सो मतलब इंया बल्लो अकी दस किनारी ना गान और ये आदेश के ना सो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 रे तहत के ऐसो जारी भी हुआ इन शोतों जी बिल्कुल उपायुक्त रहे बलना है यानी कि डीसी साहब रहे बलना है कि मानसून रे दौरान के ऐसो भारी बरखा रे कारण जो नदी हिन इंदी जो नाले हिन जो खड्डा हिन इंदी है ना इतिया के ऐसो एकदम जल स्तर के ऐसो अचानक तो बड़े गंदा हा अचानक बरखा बुझ गंदी अचानक तो जल स्तर के ऐसो बड़ी गंदा हा। इवन कि तो है अगर फॉर एग्जांपल तो है अगर गंजरमा देव की ऐसो इस आली खड्डा की ऐसो न्यो करते हैं है ना ता तुसको पता भी ना लगना कि जल स्तर कहने बड़ी गो क्योंकि ऊपर मौसम धुंध प्योरे बुने और ऊपर मौसम किया सो खराब होना हा और एकदम थो किया सो जल स्तर बड़े गंदा हा पता ना लगता हा अचानक बड़े गंदा हा और फ्लैश फ्लड तेज भाव भूस्खलन जेनी जो घटनाएं ने ना कभी भी किया सो बुझ सकती हिन ता ऐसे में किया सो मणु थो जो इंदे धर्मशाला रहे मणु तिया थो और जो पर्यटक ने त्यारी सुरक्षा सुनिश्चित करने वास्ते ये आदेश के इंया ये जारी कर रहे हिन श्रोतों और ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 रे तहत कहने सो जारी हुए हैं। तो ये गल रहे तो सब भी विशेष ध्यान रखना भाई जितने भी श्रोता इस समय में जो हुनु कर दें इवन कि फेसबुक रे माध्यम तो हेरू कर दे हैं कि इन देड़ी तो खड्डा खड्डा धर्मशाला रे गल करूँ तो खड्डा खड्डा है ना और बड़ी अच्छी अच्छी खड्डा है तो नदी रे किनारे भी नगान खड्डा रे किनारे भी नगान है ना जो मतलब कुछ ऐसी जगह तुसू लगते जड़ी भूस्खलन भुज सकता जड़ी लैंडस्लाइड भुज सकते जो जगह बह के सकते आ तस किनारी भी कहना भट्टी भुट्टी किनारी भी कहना सो नागान अब ऊपर किनारी ट्रैकिंग भी किया सो थोड़ा करे अब कजो कि बरसाला लगुरा तब बंद करन यात्रा की सो मतलब ठीक है जड़ी जरूर आ गाना तड़ी जरूर गान लेकिन इं कदी इं भी है चली पंदे घर का मतलब एरोरा ता दोस्त हो गए है ना एरोरा मस्ती मारना या फिर इं भी चली पंदे ता घट यात्रा के सो इस समय घट यात्रा यानी कि घट इस समय किया सो घर थो बाहर निकल और बाकी जो गुणा सो तो पूछ के रहना लेकिन चलो

0: दायित्व बनेगंदा कचुक है इस प्लेटफॉर्म में बेखुरे इंता इंता फर्ज बनेगंदा कि अपनी जनता जो कि असो करखा न करखा संदेश पहुंचाना इंदा पहला दायित्व इंदा पहला कर्तव्य है श्रोतों। चलिए जी अश्वनी सुकेतिया जी राम राम जय श्री राम जी। बहुत अच्छा लगता तुम्हारा कमेंट हमेशा इंदा। चलिए कार्यक्रम जो हगो बड़न कुछ और जानकारी हिन जो तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर ले और साझा भी कर ले। बहरहाल इस कनारी में इसकोला भी ज़्यादा बुझगी ध्यान। चलिए ध्यान नरे गल बंदे हमेशा। चलिए लेकर ही चलते हैं तू सभी जो इस प्यारे दे गीतरी किनारी और श्रोतों तू सो के फिर रूब रूब हुंदे ने कुछ एक और जानकारी लेकर ही। तू सब बने रहे जुड़े रहे रेडी गुंजन री इसी गूंज सोगी इंदे श्रोता असोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: ठीक ठाक ने सर जी?
0: जी। कौन बोलूं दे ना और कड़ी थों बोलूं दे। हाँ
1: सुनील कुमार बोल रहे हैं सर जी, कोट में जलोटी सर जी।
0: जी
1: सुनील कुमार बोल रहे सर जी, जलोट कोठिया थे। हाँ
0: अच्छा। जी सुनील
1: जी सर
0: कुमार
1: जी,
0: जी क्या फरमाइश है तुंदे।
1: मैं सुनना सर जी गाना सुनील राणा की आवाज जैसे गदियाड़ी सॉन्ग है, मालण बागे मरुवेरी डाली।
0: हाँ जी कुंदे गीत जी।
1: सुनील राणा दी आवाज़ सुनना सर गाना, मालण बागे मरुवेरी डाली।
0: अच्छा मालन गीत होना तुसु।
1: हाँ जी सर जी,
0: चलिए ठीक है जी तो जरूर
1: धन्यवाद
0: होने
1: सर
0: ले
1: जी,
0: तुसु राणा साहब दा
1: धन्यवाद
0: गीत
1: सर
0: ना जी।
1: जी। हाँ जी सर जी, नमस्ते सर जी।
0: धन्यवाद जी। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और तो सब इस समय बन रहे जुड़ रहे हैं उस होगी बिल्कुल लाइव। आइया थोड़ा करिए और हगो चलते हिन और इन दे श्रोता करना सो के कनेक्टेड हैं। कुछ दिन पहले कौन बोलूँ दे डिस्कनेक्ट हो चुके। चलिए डिस्कनेक्ट बंदे भी समय थोड़ा ना लगता।

0: if you're con-
1: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा है और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप बाखूबी तो है हूँ करते हैं थोड़ी करी आज सिग्नल रे दिक्कत की है सो जरूर इच्छु कर दे हा बरसाला लग रहा है सिग्नल रे दिक्कत तक है सो इणे इणे है ना तो कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं तो सब श्रोता सो की बिल्कुल जुड़ सकते हैं 7018887098 पर कॉल करी करे नंबर आख मौके फिर तू होगी शेयर कर दें जनाब 7018887098 पर चलिए चल दें कार्यक्रम जो हगो लेकर चल दें और अब थोड़ करी मौसम को जो कि सिग्नल रहा है गल करी थी तो मौसम की सो खराब बच्चों ही करता है यह सब बाखूबी यह गल तो रूबरू हैं तो छह ज़िला में बरकरा ऑरेंज अलर्ट फिरे हा जी बिल्कुल शोतों हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने कि सो आक मौके फिरे कि सो तेज़ रफ्तार पकड़े ले आ शोतों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला शिमला की सो ये दसो कि अगले 24 घंटे में प्रदेश वे प्रदेश वास्ते चुनौतीपूर्ण दसहीन शिमला मंडी कांगड़ा चंबा सिरमौर और ऊना ज़िला में भारी थों बहुत भारी बरखरा ऑरेंज अलर्ट की ऐसो जारी करो हाशो थों विभागे की ऐसो मनु थों और पर्यटक थों अनावश्यक यात्रा थों बचने तथा प्रशासन री एडवाइजरी जा एडवाइजरी रा पालन करने रे अपील की ऐसो करे हा मौसम विज्ञान केंद्र रे अनुसार अगले 2 दिन रे दौरान कई स्थान पर तेज बरखा रह सोगे बिजली भी चमकी सकती है और तेज़ हवाएं भी क्या ना सो चली सकती हैं शोतों और ये चलने भी संभावना क्या सो बिल्कुल हा ता अगम के फिर ये जानकारी तुसु तक पहुँची पुजी है शोतों रेडी गुंजन धर्मशाला रे माध्यम थों ता बिल्कुल तू सब भी जो है गल्लरा ध्यान रखना इंदा कांगड़ा भी हा है ना चंबा भी हा भरमौर भी हा ऊना भी हा और शिमला भी हा इड़ी जम करके ऐसो बरखा बोने अगले अब कुछ ही घंटे बाद शोतो यथा अप्रोक्सीमेटली तो सूरज 24 घंटे 24 घंटे तो पहले की ऐसो भी बुझ सकते हा बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और इंदे श्रोता असोगी कनेक्टेड हैं कुछ दिन कुंबर लुंदन नमस्ते जी
2: नमस्ते जी जी नमस्कार
1: नमस्कार जी जनाब नमस्ते नमस्ते क्या हाल चाल न
2: बढ़िया जी बढ़िया फर्स्ट क्लास जी
1: क्या बात है फर्स्ट क्लास ही बोले छिंदे हाल चाल है ना जी
2: जी जी जी
1: अच्छा जी कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन
2: बोलूं दा जी पार बोलूं दा टिल्लू हूं
1: अच्छा तो टिल्लू कदे इस समय मौसम धुंद पे हो रहा
2: ना नहीं अब नहीं तुम अब साफ है
1: अच्छा बिल्कुल साफ है मौसम बरसाला लग रहा तो पता की लगना की इसको बरसाला लग रहा है ना जी करतार जी बस यही लगा तो पूछना कि आज तो 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले टिल्लू कदे कदे हुसदा तो और आज कदे हुसदा कदे बरसाला कदे बंदा तो बरसाला
2: बरसाला बहुत बढ़िया बंदा फर्स्ट क्लास होता है डरावने ना ये बरसाला डरावने ते एकदम नहीं बरखा पैनी है डर लगता फिर ये बरसाले दा
1: अच्छा चलिए तब करतार जी बड़ी चीज जकन सो बदली गई ना ना
2: हम थोड़ा चेंज हुए सर
1: अबे एरा पहले तो मनु बड़े सच्चे बंदे थे इन दे सियाने बड़े सच्चे बंदे थे आज भी इन कई सियाने इन दे बड़े सच्चे ना ना अबे एरा आज कनी जनरेशन एरा असु असु एरा मतलब है ना अबे जनरेशन बदले गई है क्या बोलते हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल
1: है ना तो चलिए अबे जनरेशन तो बदले ऐसा बस वो पता कुछ भी पूछ सकता जनरेशन कुछ भी किया सो कर सकते हैं और सच झूठ तो अजकना युवा कनंदा है क्या बोलते हैं
2: चलिए
1: ठीक है जी करतार जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले
2: बाहर निकले नहीं कुछ वो बाहर मानो।
1: क्या बात है, बाहर निकला नहीं कुछ को। करतार जी तो जीन दे सियाने कदी कदी बही गंदे थी है बोड़ी अंदर, है ना, बरसाले
2: जी हाँ
1: बरसूले बोड़ी अंदर बही गंदे थी है, तो कदी कदी गुनगुनाई भी लंदे थी है।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: तियां तुहे तुहे गुनगुनंदे है ना।
2: अरे आए ना सारे मन जो सो प्यार ही करे वो दिन फोन प्यार खत्म करी थी आवाज ये
1: हाँ, सो
2: आना
1: सो गला ने सच बोलिया।
2: फोन ही सब कुछ है बीमार है सुसान तो लेना था बंद है ठीक है तू बंद है अभी अभी ठीक हूँ ना तब सुसान तो लेना काम भैया रिहाई करनी है तड़ी
1: हाँ
2: अब कौन बैठ बंदा कौन क्या कर बंदा
1: है ना, कितनी भी अच्छी गल और प्यारी गल तो बल्ले की, पहले सुख शांत लेना गंदे थी है ना, रिहाई
2: हाँ जी हाँ
1: करते
2: जी
1: थी है, मतलब अपू में बड़ा तालमेल रहता था, बड़ा प्यार रहता था। आजकल तो इंसान में ईगो बड़े भरे है करतार जी, ईगो
2: हाँ
1: मतलब
2: जी हाँ
1: कि
2: जी बिल्कुल
1: अहंकार बड़े भरे कि आऊँ शेरे को गच्छू आऊँ फलाने को गच्छू, है ना, इन्हें इन्हें बचूरा आजकल था।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: हाँ करतार जी, ये पुराने मनु ताए तो बोलूंदा, पुराने मनु सच्चे भी थी और अच्छे भी थी है ना,
2: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: अब
2: जी हाँ
1: ना
2: जी
1: सो सच्चे रहे सो मनु, ना सो मनु रहे ना सो सच्चे रहे ना सो अच्छे रहे।
2: प्यारे आए ने आदमी ऐसा बस हक प्यारे के फोन चाहिए सौगी प्यार है बाकी कुछ नहीं है।
1: बड़ी सच्ची गल है, बस फोन चाहिए।
2: हाँ जी हाँ जी ए
1: चलिए
2: यार सुनना तो प्यार आ हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करतार जी, है था
2: सर
1: अपनी अपनी रूट सो की है, सो रोज जुड़ता है इन रोज इन द कार्यक्रम की ब्रॉडकास्ट बुंदा, और रोज है गलबात भी करते हैं, है ना, और तो सो ये सियाने सो की रोज जुड़ता सो बड़ी खुशी बुंदी है, सो
2: बिल्कुल
1: पुरानी
2: बिल्कुल
1: गल्ला की ना सो इन द युवा की सो हुंदा और

बनी रहे तो सब, जुड़ी रहे तो सब। आर जे सचिन कपूर सो गए, गूंज अपने पन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता असोगी बन रहे जुट रहे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कैंसो चल रही है श्रोताओं ता आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और है आगो बढ़ाई लंदे हिन थोड़ा करे आज सिग्नल रे दिक्कत की ऐसा जरूरी छू कर दिया ए गलत हो है बिल्कुल रूबरू हिन छतो लेकिन सिग्नल छो की असु हौसला ना हारना बहरहाल सोने भूंकुरे फरमाइशा यह भी पूरी कर लेंदे ना और तथों बाद मिलते हैं इन शोधों।

श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर हेवेड़ी गुंजन धर्मशाला हा। और श्रोताओं, आऊँ तुसो की तुंद अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हा। वेड़ी गुंजन तो है हूँ कर देने समय और कार्यक्रम इंदा अपना गादा कार्यक्रम की ऐसा चल रहा, लेकिन अब समय रहा अभाव है श्रोताओं, क्या करना, समय सो की तो चलना पैना। और समय सो की ऐसा इंसान में परिवर्तन भूना भी की ऐसा बहुत ज़रूरी है। समय सो की तस्वीर अपने आप में परिवर्तन करना की ऐसा भी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोताओं। तो फिलहाल गंद गंद एक और जानकारी तो हो गया है साझा कर देने। प्रदेश वैसे भी स्कूल स्कूल कॉम्प्लेक्स में कि ऐसा लागू भूनी अब अक समान छुट्टी। जी बिल्कुल श्रोता हूँ, प्रदेश है सरकारी स्कूल में अब के ऐसो अक ही स्कूल कॉम्प्लेक्स में के मतलब अक समान छुट्टी के अनसो भूनी ही है ना। कई वक्त क्या हुआ कि कस की छुट्टी छुट्टी रे कैलेंडर कुछ और बलदा, कस की वह छुट्टी रे कैलेंडर किया सो कुछ और बलदा है। तो अब प्रदेश है सभी स्कूल में के स्कूल कॉम्प्लेक्स में के सो लागू भूनी ना अक समान छुट्टी। सरकारी स्कूल रे हूँ गल करूँ करदा श्रोता हूँ, अलग अलग अवकाश कैलेंडर रे तहत छुट्टी अब ना भूनी ना, अब कैलेंडर भी आग बनेगा ना और छुट्टी भी किया स्वाक समान भूनी हिन सरकारी स्कूल लारी शोतों। तो बहरहाल अब समय बुझगो तो सुतो इजाजत लेने रह शोतों, क्या करिए लेना तो पैना ही इजाजत गाना था पैना ही। हाँ तो चल पेंदे न और फिर मिलते इन शोतों, तुस हो गए हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और माँ बाप की सेवा करते रहे, किसी का बुरा मत करा मुस्कुरंदे रहे। इन शब्द था हूँ सचिन कपूर, लेनू तुसु तो इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। हिमाचल के युवा सीखेंगे चीन की भाषा। 3 माह में होगी कामकाज की समीक्षा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जापान में हिमाचल की बेटी की चमक। उपराष्ट्रपति 10 को करेंगे वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से।

0: मानसून के मद्देनजर जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कांगड़ा हेमराज फेरवा ने जिला कांगड़ा में नदियों, खड्डों, नालों, झरनों, बांधों, जलाशयों तथा अन्य जल स्रोतों के समीप जाने और जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदियों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड, तेज बहाव और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं शीघ्रता और सरलता पूर्वक मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कार्यालय भी शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है। नगरोटा बगवा उपमंडल के अंतर्गत टंग, उथड़ा ग्राम, बलधर, जसोर सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के कारण 31 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने बताया कि इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग योल भ्रोबड़ बलधर सड़क से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा देहरा उपमंडल में कुंडलहार से राजकीय हाई स्कूल मोहाल रोड तक 2 किलोमीटर सड़क पर सीसी पेमेंट बिछाने के कार्य के चलते 8 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इस अवधि में यातायात को कुंडलहार नखेड़ उलकरियाड़ा मार्ग से डायवर्ट किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग, सावधानी संबंधी सूचना बोर्ड तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ओकओवर में मंडी से चंडीगढ़ तथा कुल्लू से मंडी चंडीगढ़ के बीच रोजाना चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी, जबकि गैर RCS मॉडल के तहत कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस सेवा का संचालन किया जाएगा। RCS उड़ान योजना के तहत मंडी से चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3500 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए 8500 रुपए। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामरिक चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक दूरगामी और ऐतिहासिक कदम उठाया है। CU में अब चीनी भाषा का कोर्स शुरू कर दिया गया है। ये पहल महज एक शैक्षणिक विस्तार नहीं है, बल्कि नोयोर एनिमी की तर्ज पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने का एक बड़ा रणनीतिक दाव है। इसके साथ ही चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बीच प्रदेश के युवाओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के असीमित अवसर भी खुलेंगे। भारत और चीन के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी अस्थिर सीमा है, जिसका एक अहम हिस्सा हिमाचल से लगता है। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर राज्य का मान बढ़ाया है। मंडी जिले के दूरदराज क्षेत्र की होनहार छात्रा भानुप्रिया ने भारत सरकार के प्रतिष्ठित इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम के तहत सगुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शैक्षणिक स्पर्धा जापान में हुई है। हिमाचल प्रदेश से इस वैज्ञानिक दल में शामिल होने वाली भानुप्रिया एकमात्र छात्रा रही है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि एकीकरण एकात्मकता और संघवाद विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे वंदे मातरम एक यात्रा शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये संगोष्ठी भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के असाधारण योगदान का पुनर्पाठ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी राहत भरी खबर है। पिछले 4 माह से लंबित वेतन का भुगतान अब जल्द किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन मद से करीब 29 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मंजूरी दे दी है, जिससे सभी जीआरएस को एक साथ 4 महीने का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र से वेतन मद की राशि जारी होने के बाद अब भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राशि संबंधित खातों में पहुंचते ही ग्राम रोजगार सेवकों को पिछले 4 महीने का बकाया वेतन एकमुश्त मिल जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एक ही स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में समान अवकाश लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि कई स्कूल कॉम्प्लेक्स में शामिल विद्यालय अलग अलग अवकाश कैलेंडर के तहत छुट्टियां कर रहे हैं, जिससे स्कूल समय शैक्षणिक गतिविधियों और समन्वय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए विभाग ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों में एक ही अवकाश व्यवस्था लागू करना अनिवार्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का ये 3रा दौरा है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा एक स्वतंत्र खुले एवं समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो ये करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा है। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य नाटक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कौन सी लगानी है?
1: इक्यानवे 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

दो मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। जी हाँ श्रोताओ, हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और भाई नमस्ते तो सभी को बनती ही है और इसी नमस्ते के साथ हम कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि संध्या का समय है और बहुत सारे श्रोता इस समय घर पहुंच चुके होंगे, कुछ पहुंचने वाले होंगे और कुछ रास्ते में होंगे और सभी का अपना अपना समय रहता है, अपने अपने हिसाब से उनका घर पहुंचना होता है। खैर, हम तो रेडियो गुंजन के स्टूडियो में आ गए हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं की तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन थोड़ी सी श्रोताओं की बात हो रही थी तो बातें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं पता भी नहीं चलता है। तो श्रोताओं कहते हैं कि किसको बोलूँ हेलो और किसको बोलूँ हाय, हर टेंशन की एक ही दवा है अदरक वाली चाय। जी हाँ, थके माथे जब भी हम अपने घर पहुँचते हैं तो मन करता है कि चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा सा सुकून भी लिया जाए और

सुकून हम सभी को मिलता है अपने घर आने के बाद। थोड़ा सा हम सुस्ताते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, दिन भर की थकावट को उतारते हैं और फिर थोड़ा सा सुनते हैं रेडियो गुंजन और देखते हैं कौन सा हमारा आज दोस्त रेडियो पर आया है और कौन कौन से गीत सुनाने वाला है। तो खैर, आपके इंतज़ार को करते हैं ख़त्म और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। तो सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक क्षमा दिवस के बारे में। हर साल आज के दिन यानी 7 जुलाई को इसे मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव, नफरत और कड़वाहट को भुलाकर क्षमा की शक्ति को बढ़ावा देना है और नए रिश्तों की शुरुआत करना है। हर किसी के बीच में थोड़ी बहुत तकरार, गुस्से, नाराजगियां तो श्रोता होती ही रहती हैं, लेकिन कहते हैं अगर एक भी मोती माला से गिर जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन के इतिहास और उद्देश्य की ओर थोड़ा सा रुक करें तो ये दिन लोगों को अहंकार और द्वेष त्यागने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सिर्फ दूसरों को माफ़ करने के बारे में नहीं, बल्कि खुद की गलतियों के लिए क्षमा मांगने और साथ ही साथ मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी होता है। आज के दिन के स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सारे होते हैं श्रोताओं। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी क्षमा करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जो है कम होता है, और मन में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना रखने से हृदय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो कितना सुकून और कितनी शांति हमें मिलती है, कितना हल्कापन हम महसूस करते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सामने वाले को माफ़ करके देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी। तो इसी शांति के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे वैश्विक क्षमा दिवस के बारे में। आज के दिन की महत्व की थोड़ी सी बात करें श्रोताओं, तो आधुनिक जीवन में सहनशीलता की कमी के कारण रिश्तों में दरार आ रही है। जब भी कोई बहस होती है तो हमसे वो बात सहन नहीं होती है और एकदम हम गुस्से में हाइपर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि रिश्तों में दरार आ जाती है। तो श्रोताओं, थोड़ी सी जीवन में सहनशीलता होनी बहुत ज़रूरी है। एकदम गुस्से में आने से बहुत सारी परेशानियां हमारे लिए खड़ी हो जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारी बीपी भी हाई हो जाता है और भी गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कहा जाता है जो हम नहीं कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा परहेज़ करना है और अपने आप में सहनशीलता बनाए रखनी है। ये दिन शो तो हमें ये भी याद दिलाता है, किसी को माफ़ करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और बड़े दिल वाला व्यक्ति ही इस तरह से कर सकता है। खुद को बड़े बने और जल्दी से अपने छोटों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, दोस्त जो भी है, उन्हें माफ़ करना सीखें। जब हम में माफ़ी की भावना आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल का बोझ भी कम होने लगता है। तो श्रोताओं, रिश्तों में गलतफहमी, नाराज़गी या मनमुटाव होना लाजमी है। कई बार तो छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वर्षों पुराने रिश्ते दूरियों में बदल जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे रिश्तों को बचाया नहीं जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, बचाया जा सकता है। रिश्ते हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखिए, सहेज कर रखिए, और अपने बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत के बारे में बताएं कि रिश्ते हम सभी के लिए कितने अनमोल होते हैं। तो श्रोताओं, इन्हें बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से थोड़ा सा हम लेते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं। हम बात कर रहे थे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के बारे में। श्रोतो, वैश्विक क्षमा दिवस आज हम मना रहे हैं और इसे मनाने का मकसद यही है कि हमें अपने रिश्तों को बनाकर रखना है, अपने रिश्तों में छोटी मोटी तकरार को जल्दी से निपटारा करके फिर से अपने रिश्तों में मजबूती लानी है। श्रोतो, रिश्तों को संभालने के लिए ईगो छोड़कर माफ़ी मांगने की बात होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ माफ़ी मांगने वाले पक्ष पर निर्भर नहीं करता है। एक ईमानदार बातचीत और सॉरी के जवाब में माफ़ी करना भी ज़रूरी होता है। कई बार बहुत सारे प्रयासों के बाद भी श्रोतो, रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि एक पक्ष अपनी गलती मान लेता है लेकिन दूसरा पक्ष माफ़ी मांगने को राज़ी ही नहीं होता है। तो थोड़ा समझदारी से हमें श्रोतों चलना चाहिए और जहां हमें लगे कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए वहां ज़रूर माफ़ी मांगे और साथ ही साथ अपने रिश्तों को बना कर रखें। श्रोतों, रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखते हैं और वैश्विक क्षमा दिवस मनाने का यही मकसद है। इस दिन केवल किसी से माफ़ी मांगने या दूसरों को माफ़ी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन में जमा गुस्सा, शिकायत, कड़वाहट को छोड़कर मानसिक शांति की ओर बढ़ने का भी अवसर माना जाता है। परिवार, दोस्ती, प्रेम संबंध, कार्यस्थल पर बातचीत, हर जगह संवाद और क्षमा रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। श्रोतो, हर जगह गुस्से, नाराजगियाँ होती हैं, अपने घर पर, आस पड़ोस पर, रिश्तेदारी में, साथ ही साथ कार्यालय में भी कई बार छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से चले और जितना जल्दी हो सके उन गुस्से नाराजगियों को मिटाने की कोशिश करें। कहते हैं हम किसी बात को खींचते जाएँ तो वो बात नहीं बनती है, अगर धागे को हम ज़्यादा खींचे तो धागा भी टूट जाता है। तो श्रोताओ, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते अपने बचा कर रखें तो जल्दी से अपने रिश्तों में आई तकरार को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा कोशिश हम भी कर लेते हैं अपने श्रोताओं तक गीत पहुंचाने का। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं हम।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापिस आ चुके हैं और हमारी बात हो रही थी ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के बारे में। श्रोताओं, आज के डिजिटल दौर में जहां कई रिश्ते चैट, सोशल मीडिया और गलतफहमी के बीच में उलझ जाते हैं, वहां वैश्विक क्षमा दिवस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जहाँ अहंकार से ज़्यादा इंसानियत को महत्व दिया जाता है। आजकल हम सभी देखते हैं कि हम सभी के साथ इस तरह से महसूस होता है कि हम डिजिटल दौर में एक दूसरे के साथ चैट करते हुए भी उलझ जाते हैं, गुस्सा नाराज़गियाँ हम फ़ोन पर भी व्यक्त कर देते हैं। लेकिन श्रोताओं, गलतफहमियाँ भी अपनों के साथ होती हैं, गुस्से नाराज़गियाँ भी अपनों के साथ होती हैं। अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि कोई गुस्सा नाराज़गी आपके बीच में है, तो जल्दी से उस समस्या से निपट कर बाहर आए। अपने बीच में अहंकार को बिल्कुल ना आने दें। कहते हैं अहंकार जब इंसान के अंदर आ जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो चीज़ें हमें दुख देती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उन चीज़ों से हमें थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। अब बात करें कि वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है। वैसे तो हमने पहले भी बता दिया, आज के दिन यानी 27 जुलाई को इसे मनाया जाता है। हर वर्ष ये दिन आज ही के दिन मनाया जाता है और लोगों को क्षमा, मेल मिलाप और सकारात्मक रिश्तों की ओर प्रेरित भी आज का दिन करता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाता है कि जीवन में हर व्यक्ति से कभी ना कभी गलती हो जाती है। किसी को माफ़ करना या गलती स्वीकार कर माफ़ी मांगना केवल रिश्तों में नहीं बल्कि मन की शांति, भावनात्मक संतुलन को भी बेहतर बना सकता है। ये दिन कटुता छोड़कर संवाद और समझ की दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश भी देता है। क्षमा दिवस मनाने की शुरुआत लोगों में क्षमा और मेल मिलाप की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। समय के साथ ये दिवस दुनिया के कई देशों में व्यक्तिगत संबंधों, समुदाय सौहार्द और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से जुड़ गया है। तो श्रोताओं, बातचीत और जानकारियाँ हम और भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में करते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ आप सुनते रहिए।

बताती हूँ मैं अभी, बस समझ आपको।

श्रोता, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आज लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोता, वैसे तो आप आवाज़ के जरिए, आवाज़ के माध्यम से हमें पहचान ही लेते हैं, लेकिन आए दिन नए नए श्रोता हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं हूँ आपकी दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में हमारी बात जो है वैश्विक क्षमा दिवस के बारे में हो रही है। तो रिश्तों में माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है श्रोताओं। किसी को माफ़ करना हमेशा ये नहीं दर्शाता है कि सामने वाला सही था, लेकिन कई बार इसका अर्थ ये होता है कि हम मन की शांति को लंबे समय तक गुस्से से ज़्यादा महत्व दे रहे थे। स्वस्थ रिश्ते केवल प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास, संवाद, गलतफहमियों को सुधारने की इच्छा से भी बनते हैं। माफ़ी से परिवार, दोस्ती और वैवाहिक जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिलता है। कई बार क्या होता है कि गुस्से, नाराज़गियाँ जो है बहुत बड़े फैसले हमें लेने पर मजबूर कर देती है, और कई बार गुस्से में लिया हुआ फैसला भी सही नहीं होता और बाद में हमें उस फैसले पर पछताना पड़ता है। तभी तो कहते हैं जब भी कोई फैसला लेना हो सोच समझ कर उस फैसले को लेना चाहिए, लेकिन हमने तो जल्दी से अपना फैसला ले लिया है अपने श्रोताओं तक गीत पहुंचाने का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं लेकर अगली जानकारियां। तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल पीस एंड लव डे के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस के बारे में। थोड़े से इसके इतिहास की ओर रुख करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा प्रेम दिवस की शुरुआत बीटल्स के ड्रामर रिसर्च स्ट्राकी ने की थी, जिन्हें उनके मंच नाम रिगो स्टार से जाना जाता है। उनका जन्म आज के दिन यानी 7 जुलाई को पड़ा था और स्टार की शांति और प्रेम जन्मदिन पहल जो 2008 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा प्रेम दिवस के विचार को प्रेरित किया गया है और उस समय स्टार 68 वर्ष के हुआ करते थे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उनके जन्म पर क्या चाहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, शांति और प्रेम। तब से हर साल स्टार दुनिया भर के लोगों को शांति और प्रेम फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रशंसक इनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे विचार व्यक्त करते हैं। और श्रोता, जीवन में शांति और प्रेम होना बेहद ज़रूरी है। जिसके जीवन में शांति होगी वो सुकून से अपने इस प्यारे से जीवन का आनंद ले सकता है और प्रेम भी जीवन को आनंदमय बना देता है। ये दोनों चीज़ें हैं जो जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। अगर जिनके जीवन में ये दो चीज़ें नहीं हैं वो कहीं ना कहीं अशांत अपने आप को महसूस करते हैं उनके, और जिनके जीवन में ये दो चीज़ें हैं वो अपने आप को सुकून भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो थोड़ा सा सुकून हम भी गीत के जरिए ले लेते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मॉनसून के मद्देनज़र जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त हिम एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा हिमराज फैरवा ने जिला कांगड़ा में नदियों खड्डों नालों झरनों जलाशय तथा अन्य जल स्रोतों के समीप जाने की जोखिमपूर्ण गतिविधियों का तत्काल प्रभाव से प्रबंधन लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा अधिनियम 2005 के तहत जारी किया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि मॉनसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदियों खड्डों और अन्य जल स्रोतों पर जल स्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड तेज बहाव और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बन जाती है। ऐसे में लोग तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ हम फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इन्हीं रंगों के साथ फिर से हम कार्यक्रम के रंगों में रंग जाते हैं और हमारी बात हो रही थी इंटरनेशनल पीस एंड लव डे के बारे में। पूरे विश्व में शांति और प्रेम का संदेश देने का ये दिन होता है। ये ख़ास दिन दुनिया में शांति के विचारों को मजबूत करने के लिए समर्पित है और साथ ही साथ जो है संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी परवाह के अपना डेवलपमेंट कर सके। विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए नस्लवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक है। इसके इतिहास की शोधों बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की शुरुआत 1981 में यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। ये खास दिन की शुरुआत होने के बाद 1982 में सितंबर के 30वें मंगलवार को इसे मनाया जाता है। इसके बाद 1982 में से लेकर 2001 तक इसे सितंबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। फिर 2001 में से अहिंसा और युद्ध विराम का दिन घोषित किया गया था। इसके बाद से हर साल इसे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में लेते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम के लिए अपना प्यारा सा।

0: शुद्ध इसी गीत के साथ साई के साथ बज चुके हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो इसी अपनेपन की गूंज के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। पंडित श्री चंद्रधर गुलेरी की जयंती के अवसर पर चंद्रधर गुलेरी राजकीय महाविद्यालय हरिपुर गुलेर तथा भाषा तथा संस्कृति विभाग धर्मशाला के उपायुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय साहित्यिक प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नंद किशोर परिमल जी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा ने की है। मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए उन्हें व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी साझी की जाएंगी आपके साथ। फिलहाल कार्यक्रम में मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम बात कर रहे थे विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति, मधुरता, भाईचारा स्थापित करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच में शांति व्यवस्था कायम रखना है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शांति का संदेश पहुंचाने के लिए कला से लेकर साहित्य, संगीत, सिनेमा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को शांति दूत नियुक्त किया है। और साथ ही साथ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की तो हमने आपको पहले भी बात की है कि इसे 1882 में शुरू किया गया था और तब से लेके अब तक इसे मनाया जा रहा है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ, जानकारियाँ भी और भी हम साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचा।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय के वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारम्भ किया है। ये कार्यालय कुछ समय पहले शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के लोगों से इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं शीघ्रता और सरलपूर्वक मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कार्यालय भी शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ फिर से कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और बात कर रहे थे विश्व शांति दिवस के बारे में। श्रोताओं, सफ़ेद कबूतर को उड़ाकर शांति का पैगाम दिया जाता है और एक दूसरे से भी शांति कायम रखने की अपेक्षा की जाती है। सफ़ेद कबूतर को शांति का दूत माना जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से लेकर अलग अलग संगठनों, स्कूलों और कॉलेज में शांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विश्व शांति दिवस के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी कुछ मूल सिद्धांत रहे हैं, एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता और प्रभु सत्ता का सम्मान करना, दूसरा एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करना, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप ना करना, चौथा समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना और पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड चेंज डे के बारे में। वर्ल्ड चेंज डे का अर्थ है दुनिया में हो रहे सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव के बारे में। आज तकनीक, भू राजनीति और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया तेज़ी से बदल रही है और ग्लोबल टेररर्स और अर्थ डे से जुड़ी स्टीक जानकारी भी दे रही है। तो थोड़ा सा तकनीकी क्रांति की श्रोता हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग से कागजात का दूसरा पूरी तरह बदल चुके हैं। अब लोग दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं और वैश्विक महाशक्तियाँ अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की श्रोताओं, बात करें तो तापमान में वृद्धि और मौसम के बदलते मिजाज ने दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती रख दी है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। तो आप सुनते

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और हम बात कर रहे हैं बदलाव के बारे में। श्रोताओं, बदलाव जीवन में बेहद ज़रूरी है और बदलाव प्रकृति का नियम है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। चाहते या ना चाहते हुए भी बदलाव के साथ हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ता है और साथ ही साथ हर बदलते समय के साथ हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं और उम्मीद बस यही होती है कि बदलाव सकारात्मक हो। इसी उम्मीद के साथ थोड़ा सा हम और कार्यक्रम में बढ़ते हैं और बदलाव की जानकारियां तो हम खैर आपके साथ साझा कर ही रहे हैं। बदलाव के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में भी बदलाव हो जाएगी संगीत का तो अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: मेरा मन
1: डेकैथलॉन मॉनसून कलेक्शन।
2: शायद इसी गीत के साथ थोड़ा सा हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमने आज आपके साथ साझा की है और जानकारियां उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। इन्हीं जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो करते हैं समाचारों के लिए कुछ इंतज़ार।
1: शिमला है, अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का किया शुभारंभ। रेरा कार्यालय जल्द खोलने के दिए निर्देश। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पटलांदर जनता को समर्पित। 16 पंचायतों के लोगों को निरंतर मिलेगी बिजली आपूर्ति। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 15,500 कर्मचारी तैनात। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार करेगी भाजपा। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के धर्मशाला में खुलने से कांगड़ा सहित आसपास के जिलों के लोगों को अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है।
3: धर्मशाला हमारी पर्यटन राजधानी के रूप में हमने घोषित किया है, तो जब यहाँ कुछ ऑफिस जाएंगे, काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली पड़ी है, तो यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो अभी काफी बिल्डिंगें यहाँ

0: गुणवत्तापूर्ण व निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के लिए इस केंद्र को टौणी देवी और सुजानपुर उपकेंद्रों के साथ जोड़ा गया है, जिससे आपात स्थिति में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने संबंधी तैयारियों व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त निजी मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम टेंडर की व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से निपटने के लिए लगभग 15,500 कर्मचारी व 1,156 मशीनरी तैनात की गई है। लोक निर्माण मंत्री ने नियमित अंतराल व ड्रेनेज व कलवर्ट की सफाई करने और अस्पताल, पुलिस स्टेशन व अग्निशमन केंद्रों सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ संपर्क सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार सहित कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कोर ग्रुप ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों के परिणामों और आगामी संगठनात्मक मुद्दों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बिंदल ने बताया कि बैठक में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों, अधूरी गारंटियों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा।
1: 3.5-4 साल के कांग्रेस सरकार के जो जन विरोधी काम, जनता के खिलाफ जो काम किए, उनको लेकर के पार्टी अगले दिनों में जन आंदोलन खड़े कर। कांग्रेस ने गरीब का राशन महंगा कर दिया, गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा, माफिया राज लूट का अड्डा बन गया, कानून व्यवस्था तार तार हो गई, हिमाचल तरह तरह से भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया। इन सभी मुद्दों को लेकर और गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़े करेगी और सरकार के काले कारनामों के चार्जशीट तैयार करेगी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वे आज भटियात क्षेत्र की मेल और चूहन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण पर कुल 6,58,00,000 रुपये खर्च होंगे और अभी तक 2-2 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व में भाजपा मंडल ने आज एसडीएम सुजानपुर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सुजानपुर व टौणी देवी बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव को तुरंत करवाने की मांग की गई है। बाद में भाजपा मंडल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
2: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वही चुनाव कर रही है जहां उनको सूटेबिलिटी है, जहां उनकी संख्या बल है, और जहां संख्या बल नहीं है वहां पर बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। 1.25 महीना से ज्यादा अरसा हो गया, सरकार बेईमानी से काम कर रही है और आज हमने सुजानपुर में धरना प्रदर्शन किया है, सरकार को चेताया है कि जल्द

0: चुनाव संपन्न करवाए जाएं, अन्यथा धरना प्रदर्शन सुजानपुर के हर जगह किया जाएगा। इसी तरह पूरे जिले में एक बीडीसी का चुनाव जो है भोरंज का संपन्न हुआ है, जहां उनको सूट करता था, अन्यथा बाकी के 5 ब्लॉकों में कहीं भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम सरकार को मेमोरेंडम दिया है कि वो जल्दी चुनाव कराए।
1: सोलन जिला के परवाणु के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने हाल ही में श्रीलंका में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। भूपिन शर्मा ने कहा कि ये पदक जीतकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहने का आग्रह किया है।
2: मैं भूपिन शर्मा, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। मैंने अभी अभी श्रीलंका में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल सिलोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और मेरा वहां पे सिल्वर मेडल आया है 35 प्लस सिंगल्स कैटेगरी में, और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा और युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि फिट रहें, मोटिवेटेड रहें और नशों से दूर रहें और अपने देश का नाम ऊंचा करें।
1: कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और R&R की राशि देने के बाद 15 दिन में घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभावित गांव के लोगों ने ऐसे नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए आज उपायुक्त हेमराज बैरवा से मुलाकात कर मकान बनाने के लिए कम से कम 1.5 वर्ष का समय देने की मांग की।
3: मेरा नाम रोशन लाल प्रधान, बिना बचाधर शर्त है। हमारी जमीन विस्तारीकरण के अंदर गई है, तो उसमें RR का जो जो लॉन्च है वो हमें मार्च अप्रैल में मिला है, तो इस वजह से हम मकान तैयार ना कर 50 साल लाल से नीचे कोई जमीन नहीं मिल रही है, इस वजह से लेट हुए हैं। डीसी साहब से यही प्रश्न की है कि हमें कम से कम 1.5 साल का टाइम दिया जाए।
4: का है पैसा बताया गया ना, उसके बाद RNR का पैसा बताया गया कि हमें कितना मिलेगा, एंड मौके पे जब पैसा डल रहा है तब हमें पता लग रहा है कि कितना पैसा पड़ रहा है। उसको जब हम NOC साइन करवाई गई तब हमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने बोला था कि आपको RNR मिलने के बाद 1.5 साल का टाइम मिलेगा, तो अभी ये सब क्यों हो रहा है?
1: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आपदा के समय ड्रोन के प्रयोग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
5: लाहौल स्पीति में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लोड केयरिंग ड्रोन संचालन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण बढ़ाना ने की। प्रशिक्षण में अधिकारियों को आधुनिक PX6 9200 ड्रोन के सुरक्षित संचालन और आपदा के समय इसके उपयोग की जानकारी दी गई। ये ड्रोन अधिकतम 75 किलोग्राम तक भार उठाकर सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम है। किरण बराना ने कहा है कि लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम जिले में ये तकनीक राहत एवं बचाव कार्य को नई गति देगी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का किया शुभारंभ। रेरा कार्यालय जल्द खोलने के दिए निर्देश। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 KV विद्युत उपकेंद्र पटलांदर जनता को समर्पित। 16 पंचायतों के लोगों को निरंतर मिलेगी बिजली आपूर्ति। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मॉनसून सीजन के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 15,500 कर्मचारी तैनात। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार करेगी भाजपा। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भूपिन शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचारों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: रे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
8: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
9: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
8: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
9: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
8: है?
9: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। हिमाचल के युवा सीखेंगे चीन की भाषा। 3 माह में होगी कामकाज की समीक्षा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जापान में हिमाचल की बेटी की चमक। उपराष्ट्रपति 10 को करेंगे वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से।

मानसून के मद्देनजर जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कांगड़ा हेमराज पैरवा ने जिला कांगड़ा में नदियों, खड्डों, नालों, झरनों, बांधों, जलाशयों तथा अन्य जल स्रोतों के समीप जाने और जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदियों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड, तेज बहाव और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं शीघ्रता और सरलता पूर्वक मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कार्यालय भी शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है। नगरोटा बगवा उपमंडल के अंतर्गत तंग, उथड़ा गांव, बलधर, जसोर सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के कारण 31 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया कि इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग योल भ्रोबड़ बलधर सड़क से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा देहरा उपमंडल में कुंडलहार से राजकीय हाई स्कूल मोहाल रोड तक 2 किलोमीटर सड़क पर सीसी पेमेंट बिछाने के कार्य के चलते 8 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इस अवधि में यातायात को कुंडलहार नखेड़ पुलकरियाड़ा मार्ग से डायवर्ट किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग, सावधानी संबंधी सूचना बोर्ड तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ओकओवर में मंडी से चंडीगढ़ तथा कुल्लू से मंडी चंडीगढ़ के बीच रोजाना चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी, जबकि गैर RCS मॉडल के तहत कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस सेवा का संचालन किया जाएगा। RCS उड़ान योजना के तहत मंडी से चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3500 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए 8500 रुपए। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामरिक चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक दूरगामी और ऐतिहासिक कदम उठाया है। CU में अब चीनी भाषा का कोर्स शुरू कर दिया गया है। ये पहल महज एक शैक्षणिक विस्तार नहीं है, बल्कि नोयोर एनिमी की तर्ज पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने का एक बड़ा रणनीतिक दाव है। इसके साथ ही चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बीच प्रदेश के युवाओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के शीर्ष खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के असीमित अवसर भी खुलेंगे। भारत और चीन के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी अस्थिर सीमा है, जिसका एक अहम हिस्सा हिमाचल से लगता है। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर राज्य का मान बढ़ाया है। मंडी जिले के दूरदराज क्षेत्र की होनहार छात्रा भानुप्रिया ने भारत सरकार के प्रतिष्ठित इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम के तहत सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शैक्षणिक स्पर्धा जापान में हुई है। हिमाचल प्रदेश से इस वैज्ञानिक दल में शामिल होने वाली भानुप्रिया एकमात्र छात्रा रही है।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मकता और संघवाद विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे वंदे मातरम एक यात्रा शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये संगोष्ठी भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के असाधारण योगदान का पुनर्पाठ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी राहत भरी खबर है। पिछले 4 माह से लंबित वेतन का भुगतान अब जल्द किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन मद से करी 29 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मंजूरी दे दी है। इससे सभी जीआरएस को एक साथ 4 महीने का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र से वेतन मद की राशि जारी होने के बाद अब भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राशि संबंधित खातों में पहुंचते ही ग्राम रोजगार सेवकों को पिछले 4 महीने का बकाया वेतन एकमुश्त मिल जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एक ही स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में समान अवकाश लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि कई स्कूल कॉम्प्लेक्स में शामिल विद्यालय अलग अलग अवकाश कैलेंडर के तहत छुट्टियां कर रहे हैं, जिससे स्कूल समय, शैक्षणिक गतिविधियों और समन्वय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए विभाग ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों में एक ही अवकाश व्यवस्था लागू करना अनिवार्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मिजोरम देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का ये 3रा दौरा है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो ये करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा है। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
7: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
10: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
10: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: हाँ? याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो सो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस,
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला, और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
6: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
9: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
10: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
12: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
13: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
12: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
13: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
12: है?
13: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
12: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
14: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
12: बात तो सही है।

अपना रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

हर सर, ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।